हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 26 सेकंड हुए हैं। अब मंगल ध्वनि के साथ हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.3 MHz पर। कुछ लम्हों बाद सुबह के 6 बजे चाहते हैं। अब आपको हिंदी समाचारों के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं। उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे विविध भारती से कार्यक्रम वंदन वार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मन की शांति सबसे महंगा गहना है, उसे संभाल के रखें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। झरोखा में अब से कुछ ही मिनट में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 200 6:35 पर। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता में श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। 7 बजे भूले बिसरे गीत। हम है राही प्यार के कार्यक्रम सुनिए 7:30 पर। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। आलेख और स्वर है राजुल अशोक का। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक करण जोहर पर। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए सेहत नामा। थायराइड की बीमारी और उपचार, इस विषय पर डॉक्टर लीजा बनर्जी से राजेश

रविंद्र त्रिपाठी की बातचीत, प्रस्तुति है रामकरण मीणा की। 11 बजे सुनिए राम रंग तरंग कार्यक्रम, 12:05 से सजेगी यादों की महफिल, 1 बजे तय करेंगे सुरीला सफर। दो बजकर 30 मिनट पर सुनिए सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली, 4 बजे पिटारा में सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे, बांसुरी वादक पारसनाथ से बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुति है जुबैर खान की। पांच बजकर 30 मिनट पर सुनिए तराने नए पुराने, 6:35 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता, माफ कीजिएगा 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता। श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग, कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन, सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग। 7 बजे आप सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए पॉप एक्सप्रेस। 8 बजे सुनिए हवा महल में नाटक यादों की परछाई का दूसरा भाग, लेखन है सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशन है दीनानाथ। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए, 10 बजे सुनिए छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करके भरत ने तीर्थराज की वंदना करते हुए अपनी मनोकामना प्रकट की। मैं अपना क्षत्रिय धर्म न त्याग कर अत्यंत आर्थ होने के कारण आपसे भीख मांगता हूँ। न मुझे अर्थ में रुचि है, न ही धर्म काम और मोक्ष की कामना है। बस एक ही याचना है कि जन्म जन्मांतर श्री राम के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भरत को त्रिवेणी के बीच से गूंजती कोमल वाणी सुनाई पड़ी। हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है, क्योंकि श्री राम को तुमसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं। भरत का तन मन पुलकित हो गया। वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि के चरणों में झुके ही कि मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया।

श्रोताओं, आपकी खिदमत में हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मिला जुला खुलासा। पहले हल्की नजर हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद प्रातः 6:55 पर संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 7 हिंदी समाचार और प्रातः 7:05 पर अंग्रेजी समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे। लोक रंग हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे आज प्रातः 7:10 पर, और 7:40 पर सुबह आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात।

श्रोताओं, आज प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे। 8:15 पर आप अंग्रेजी समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। आज प्रातः 8:30

पर विविध भारती से आप सुनेंगे सदाबहार सुरीले कार्यक्रम भारत की गूंज। ये कार्यक्रम आज प्रातः 9 बजे विविध भारती से होगा और आज के फनकार कार्यक्रम 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती से। श्रोताओं सुनिएगा अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिसार आज सुबह 10 बजे हमारे केंद्र से। 11 बजे कार्यक्रम रंग तरंग आप सुनेंगे विविध भारती से। 12 बजे यादों की महफिल कार्यक्रम होगा विविध भारती से और दिन में 1:10 पर गीत माला कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती से। दिन में 1:05 पर प्रादेशिक समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र लिए चलेंगे। श्रोताओं दोपहर 2:30 पर सदाबहार फिल्म नगर में आप सुनेंगे विविध भारती से। 3 बजे कार्यक्रम सुन सकते हैं सखी सहेली विविध भारती से और 4 बजे कार्यक्रम हेलो फरमाइश ये भी आप कार्यक्रम विविध भारती से सुनेंगे। श्रोताओं आज शाम 6 बजे हिंदी समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे और आज शाम 6:10 पर प्रादेशिक समाचारों के लिए भी आपको हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र लिए चलेंगे। 6:20 पर प्रभु वंदना का कार्यक्रम सुनेगा भक्ति संगीत और 6:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे उमंग। 7 बजे कार्यक्रम सुनेगा किसान वाणी और 7:30 पर आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम हरे गांव का। श्रोताओं आज रात्रि 8 बजे लोकमंच कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से और रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम सुनेगा यादों के झरोके से। श्रोताओं आज रात्रि 10 बजे आप हमारे केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे।

आइए श्रोताओं, अब आपको बता दें हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 पर। कल सुबह 6 बजे हिंदी समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र ले चलेंगे। कल प्रातः 6:05 पर कार्यक्रम वंदन वार आप सुनेंगे विविध भारती से। कल प्रातः 7:10 पर हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग हम आपको सुनाएंगे हमारे केंद्र से। 7:40 पर कार्यक्रम होगा सुप्रभात।

श्रोताओं, कल सुबह 8 बजे समाचार प्रभात के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे। अंग्रेजी में समाचार कल सुबह 8:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे। कल प्रातः 8:30 पर विविध भारती से आप सुनेंगे सदाबहार सुरीले कार्यक्रम भारत की गूंज। ये कार्यक्रम कल प्रातः 9 बजे विविध भारती से होगा और आज के फनकार कार्यक्रम 9:30 पर कल आप सुनेंगे विविध भारती से।

श्रोताओं, कल 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती से, और 12 बजे यादों की महफिल कार्यक्रम भी विविध भारती से होगा। दिन में 1:05 पर प्रादेशिक समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र लिए चलेंगे। दिन में 2:30 पर सदाबहार फिल्म मेनक में आप विविध भारती से सुनेंगे, और दिन में 3 बजे सखी सहेली कार्यक्रम भी आप सुन सकते हैं विविध भारती से।

श्रोताओं, कल दिन में 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती से, और कल शाम 5 बजे आप हमारे केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड। प्रभु वंदना का कार्यक्रम सुनेगा कल शाम 6:20 पर, और कल शाम 6:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे उमंग।

श्रोताओं, कल शाम 7 बजे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसाना सेते, और कल शाम 7:30 पर कार्यक्रम होगा महारे गांव। श्रोताओं, कल रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत आप सुनेंगे आकाशवाणी के हिसार केंद्र से, और रात्रि 8:30 पर कल आप सुनेंगे कार्यक्रम हरियाणा की गलियारे से।

श्रोताओं, कल रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे। कल रात्रि 9:15 पर विविध भारती से सुनेंगे आप सदाबहार सुरीले नगमे। और श्रोताओं, कल रात्रि 10 बजे आप हमारे केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। श्रोताओं, कल रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और कल रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मिला जुला खुलासा। ये आकाशवाणी हिसार है, FM 102.3 MHz पर। कुछ ही लम्हों बाद सुबह के 6:55 हुआ चाहते हैं। अब संस्कृत समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं। इंतजार के हल्के से पल हमारे साथ।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः राष्ट्रपति भवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे षट्षष्टिः प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्म विभूषणम्, षड्भ्यः पद्मभूषणम्, सहैव अष्टपञ्चाशत् विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्मविभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉ एन राजम अपि पद्मविभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, एचडी कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति।

0: एकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणम् अन्ताराष्ट्रिय चिन्तायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीड़ा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनम् इत्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशति दिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्ट चिकित्सालयेभ्यः चिकित्सा साहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्ण स्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी द्वित्री दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेही देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगे। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोमरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नई सुबह नए सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी सार कार्यक्रम हरियाणवी लोक रंग के साथ। आज के लोक रंग के कलाकार हैं सुनील दुजानी और साथी। ये है कार्यक्रम की पहली रागिनी।

बिस्तर पर होया खड़ा और भगवान न भरोसा।

0: यह लोक रंग की आखिरी पेशकश, कलाकार हैं सुनील दुजानी और साथी।
1: ये सच्चे करता

ये सुना भाई, आज आपने हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम के तहत सुनील दुजानी और साथियों की आवाज में गाई रागनिया। इसी के साथ आज का हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे बन भैया ने राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग आजाद सिंह के संग। FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है आपके लिए कार्यक्रम सुप्रभात।

श्रोताओं, आज का कार्यक्रम सुप्रभात लेकर आवाज की दुनिया की दोस्त क्षमा इस कार्यक्रम में आज आपके साथ।

आयुषोत्तम, आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज 26 मई सन 2026 का दिन है, आज मंगलवार है, आज एकादशी पूर्ण रात्रि तक है। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर लें, इस समय कोई शुभ कार्य न करें। आज राहु काल अपराह्न 3:45 से अपराह्न 5:28 तक रहेगा। नक्षत्रों की बात करें तो आज हस्त माइनस पूर्ण रात्रि तक का योग है। श्रोतों, आज सूर्योदय 5:25 पर हो चुका है और सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा।

और श्रोताओं अब मौसम का हाल जान लेते हैं। आज 26 मई सन 2026 को हिसार में मौसम मुख्य रूप से साफ, बेहद गर्म और शुष्क रहेगा। आज अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। दिन भर तेज धूप खिली रहेगी। दोपहर के समय चिलचिलाती धूप के कारण मौसम काफी गर्म महसूस हो सकता है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। आसमान पूरी तरह साफ रहेगा।

और दोस्तों अब आज का सुविचार। यहाँ लोग वही सुनना चाहते हैं जो सुनना उनके कानों को पसंद है, फिर चाहे वो सच हो या झूठ। जो पानी साफ होता है उसमें मछलियां कम होती हैं और जो पानी गंदा होता है उसमें मछलियां बहुत ज्यादा होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही हाल कलयुग में रिश्तों का है। यहाँ व्यक्ति मन का जितना साफ और सच्चा है उतना ही अकेला है। जी हाँ श्रोताओं, अक्सर हम ये सुनते आए हैं कि इंसान की फितरत मौसम की तरह बदलने वाली होती है। जहाँ कहीं भी किसी शख्स को लाभ मिलना अपने लिए नजर आने लगता है, वो उसी तरफ मुड़ जाता है। उसे इस बात से उस वक्त ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि ऐसे में उसका कौन अपना पीछे छूट रहा है। श्रोताओं, वक्त, हालात, परिस्थितियां हमारे जीवन में कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं। थोड़ी थोड़ी अंतराल के बाद सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से इंसान बदल रहा है, सोचने वाली बात है। दोस्तों, आज हर कोई ये चाहता है कि सिर्फ उसी की तारीफ हो, उसी को सभी लोग पसंद करें, उसी की हर बात को सराहें और उसी को आंखों पर बिठाएं। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों, मैं ये कहना चाह रही हूं कि आज के वक्त में तारीफ की भूख और अपनी प्रशंसा सुनने की लालसा बहुत बढ़ चुकी है। कुछ लोग सिर्फ उतनी ही प्रशंसा सुनने की ख्वाहिश रखते हैं। अपनी ही प्रशंसा सुनने की कुछ लोग ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे में दूसरों की तारीफ कोई करे ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी हां श्रोताओं, वाकई यहां लोग वही सुनना चाहते हैं जो सुनना उनके कानों को पसंद है, फिर चाहे वो सच हो या झूठ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उनकी तारीफ में कोई कसीदे पढ़ने वाला होना चाहिए। श्रोताओं, ये शाश्वत सत्य है कि जो इंसान सच्चा होगा, अच्छा होगा, कर्तव्य निष्ठ होगा, मन का साफ होगा, उसके आसपास लोगों का जमावड़ा कम होगा, यानी कि लोगों की भीड़ आपको कम नजर आएगी। और दोस्तों, जहां झूठ होगा, फरेब होगा, धोखा होगा, झूठी तारीफ का छल होगा और इन सब से ऊपर विचारों की, भावों की गंदगी होगी, उस इंसान को आप भीड़ से घिरा हुआ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, साफ पानी में मछलियां ज्यादा देर ठहर नहीं सकती हैं। उनका स्वभाव गंदगी में जीने का ही बन चुका होता है। श्रोताओं, ये 100% बिल्कुल सच है कि जो व्यक्ति मन का जितना साफ और सच्चा होगा, वो उतना ही अकेला होगा। उसके आसपास ना आपको भीड़ दिखाई देगी और ना ही उसमें झूठी तारीफ सुनने की ललक होगी। ऐसा इंसान सिर्फ अपने कर्तव्य पथ पर सच्चाई के साथ हमेशा अग्रसर रहेगा, ये कहते हुए।

आइए दोस्तों, अब रामचरितमानस के पद का वाचन करते हैं। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बढ़े न भोरे। अर्थात राजा लोग खूब सद धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन ही कुरूप न जाय बखाना। सो चरित लकि काहू न पावा, नारद जाने सभी सिर नावा। अर्थात कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया।

आइए दोस्तों, अब आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक किसान था, वो मेहनत तो खूब करता था लेकिन कभी पूरी फसल नहीं उगा पाता था। कभी ओले पड़ जाते, कभी तूफान आ जाता, कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़। इस पर वो भगवान से नाराज हो गया। उसने उनसे कहा, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ और आप सब गड़बड़ कर देते हैं। बस इतनी ही फसल बचती है कि सिर्फ 2 जून की रोटी चल सके। उसने भगवान से प्रार्थना की कि बस 1 साल के लिए ऐसा कर दो कि जब जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए। भगवान ने स्वीकृति दे दी। अब किसान ने मौसम को अपने अनुकूल रखा, जब चाहा धूप रखी, जब चाहा छांव कर दी, सींचा हुआ पानी बरसा दिया। बाढ़, सूखा, आंधी, ओले तो पड़ने ही नहीं दिए। जब फसल बड़ी हुई और दानों को काटने का वक्त आया तो किसान हैरान रह गया, बालियों में दाने ही नहीं थे। उसने भगवान से पूछा, भगवान आपने ये क्या किया? इस पर भगवान बोले, तुमने इनकी परवरिश तो मेहनत से की लेकिन इन्हें हवा, पानी, ओले और तूफान जैसी विपत्तियों से लड़ने की शक्ति नहीं दी। विपत्तियों से मिली ऊर्जा से ही यह शक्ति विकसित होती है। व्यक्ति का विकास जीवन के संकटों से संघर्ष करके ही होता है। जी हां श्रोताओं, ये बिल्कुल सच है। इसलिए हम सच्चे भाव से उस प्रभु के चरणों में हमेशा नतमस्तक रहें और सब कुछ उस पर छोड़ दें। वो सब अच्छा ही करेगा।

दोस्तों, कार्यक्रम सुप्रभात में आज बस इतना ही। अब अपने दोस्त क्षमा को इस कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात FM 102.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, समाचार प्रभात के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं। इंतजार के हल्के से पल हमारे साथ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटॉक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
2: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
5: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
2: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
7: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
8: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
2: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाई 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्तो, ध्रुव कपिला और रोहन कपूर, रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
2: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
10: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर

विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह को बोलते हैं गुड मॉर्निंग बचना ए हसीनो फिल्म के इस गाने के साथ। लकी अली और श्रेया घोषाल की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल

बचना ए हसीन वो फिल्म से आप ये सुन रहे थे गाना। इस गाने को लिखा था अन्विता दत्त ने और इसका म्यूजिक विशाल शेखर ने तैयार किया था। इसी जोड़ी का सुनते हैं अगला गाना दोस्ताना फिल्म से। विशाल ददलानी की आवाज में उनके साथ है श्रेया घोषाल और साथी।

मन मतवाला क्यों हुआ इसकी तो खबर नहीं है, लेकिन शायद थोड़ा सा हिंट दे रहा है। कार्यक्रम का अगला गाना बैंड बाजा बारात फिल्म से। श्रेया घोषाल की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य की बोल और म्यूजिक है सलीम सुलेमान का।

0: चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं किल दिल फिल्म से। अरिजीत सिंह, मेहरा जोशी की आवाजों में शाद अली के बोल हैं और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।
1: आपने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में? वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी।

आप सुन रहे थे किल दिल फिल्म से ये गाना। इस गाने की शुरुआत में आपने सुनी गुलजार की आवाज, और इस गाने को लिखा भी था गुलजार ने और म्यूजिक तैयार किया था शंकर एहसान लॉय ने। गुलजार और शंकर एहसान लॉय इस जोड़ी का सुनते हैं अगला गाना बंटी और बबली फिल्म से, सोनू निगम महालक्ष्मी अय्यर की।

0: आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म है गजनी, कार्तिक की आवाज, प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

रजनी फिल्म से आप सुन रहे थे ए आर रहमान का कंपोज किया हुआ ये बेहतरीन म्यूजिक। आइए अगला गाना सुनते हैं उन्हीं की कंपोजिशन में युवराज फिल्म से, बनी दयाल, श्रेया घोषाल और ए आर रहमान की आवाजों में गुलजार के बोल।

0: टशन फिल्म से गाना हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं यह संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए
0: सुनवाएंगे हम आपको टशन फिल्म से वो गाना, लेकिन बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए अब सुनवाते हैं हम आपको टशन फिल्म से गाना, जिसके लिए करवा रहे थे हम आपको इतना इंतजार। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर इंतजार का फल मीठा होता है। इस बार आपके इस इंतजार का फल थोड़ा सुरीला होने वाला है।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, तुम्हारी सुलुफ। इस फिल्म से रोंकिनी गुप्ता की आवाज में शांतनु घाटक का म्यूजिक और लिरिक्स।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं जब हैरी मेट सेजल। इस फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज, इरशाद कामिल के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का।

0: इसी गाने के साथ वक्त हो चला है इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का। डीजे सुदक्षिणा को इजाजत और सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: यस, हु इज इट?
2: डॉन।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसी बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती है, जंप कर जाती है। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
2: श्रोताओं नमस्कार।
3: इन्ना सोना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल, इनू वेख जे कुड़िया तो पेंदी ओ माता ओ माता।
2: जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।

25 मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं, लेकिन

करण के पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

करण जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को मां हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी मां हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

साल 2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माय नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसीलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

0: माने ना।
1: साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

करण जौहर फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

करण जौहर यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजात खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

और फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

करण जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आईं, जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।

साल 2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: कार्यक्रम आज के फनकार FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश खिदमत है कार्यक्रम नमस्ते हिसार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम करें इससे पहले आकाशवाणी हिसार से ये प्रोमो सुनी दो बेहतरीन आवाजों में।
1: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
2: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
3: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
2: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
3: हर मंगलवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
4: अगर तुम्हारी आरजू एक कनीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
3: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
2: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
5: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
3: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
6: Will he be remembered as a great scientist, said Thomas Alva Edison।
2: कोई कला में उत्कृष्ट है?
3: तो कोई संगीत का शिरोमणि।
2: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
3: कार्यक्रम एक शख्सियत
2: हर सोमवार शाम 5 बजे
3: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
2: क्या आप परेशान हैं?
7: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
3: क्या आप खुश हैं?
8: आज मैं ऊपर।
2: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
9: पापर के नचने नूजी कर दे।
3: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
10: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
2: या आप प्यार में हैं?
11: पहला पहला प्यार है।
3: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
12: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
2: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
3: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
2: कार्यक्रम संदेश आपके, गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
3: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
2: वर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताज़ा खबरें।
13: आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं।
3: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
14: मैं अलबेली घूमू अकेली।
2: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
15: अभी न जाओ छोड़ कर।
3: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
2: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर?
3: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
2: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
3: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
2: हर सुबह एक मौका है
3: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
2: कोई है जो आपको एहसास दे

0: लाता है
1: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
0: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
1: आकाशवाणी हिसार के साथ।
2: राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
0: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
1: रोज सुबह 7:40 पर
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

श्रोताओं, आपका प्यार, आपका इंतजार, आपका ख्याल, आपका ख्वाब, आपकी ख्वाहिश, आपकी तमन्ना, आपकी सुरीली धड़कनों की सदा और आपके मखमली एहसासों की फरमाइश आकाशवाणी हिसार।

दोस्तों, आकाशवाणी हिसार आपकी बेसब्री का इंतजार है, आपकी मोहब्बत का करार है और बस बेशुमार बेइंतहा आकाशवाणी हिसार से आप सबको प्यार है।

दोस्तों, मोहब्बतें ने आगाज़े बयां के साथ आज एक बार फिर आवाज़ की दुनिया की दोस्त क्षमा आपके साथ कार्यक्रम नमस्ते हिसार लेकर हमारे सभी चाहने वालों को मोहब्बत से भरा नमस्कार।

क्यों तेरी ख्वाहिश हर लम्हा मुझको बेचैनियां बख्श देती हैं? क्या खास बात है तेरे साथ में जो मुझको उकसाती हैं, बस तुझे ही पास बुलाती हैं? क्यों साथ बैठना तेरे मेरे मन को भाता है? क्यों अच्छा लगता है तुझसे बतियाना मुझे? सोचती हूँ कोई तो खास बात है तुझमें, या फिर मेरे एहसासों का जुनून है।

दोस्तों, आपसे मिलना, आपसे बातें करना, आपके साथ वक्त बिताना और आपके एहसासों को समझ लेना हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब आपके साथ हमारा वक्त बीतता है, आप हमारे दिल की बात को समझ लेते हैं और आपके दिल की बात को हम अपने एहसासों में उतार लेते हैं। यही तो दोस्तों सच्ची मोहब्बत है जो हम एक दूसरे से करते हैं। ये वक्त कब गुजर जाता है आपके साथ पता ही नहीं चलता दोस्तों, और आपको इंतजार हमारा हमेशा रहता है, यानी आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रमों का इंतजार आप बेसब्री से करते हैं। तो दोस्तों, आपका इंतजार हमें आप तक पहुंचाता है और कुछ नया करने का एहसास हमारे मन में जगता है। फिलहाल आप सुन रहे हैं अपने दोस्त क्षमा के साथ कार्यक्रम नमस्ते हिसार FM 102.3 MHz पर। तो दोस्तों, अब वक्त है स्थानीय खबरों का।

श्रोताओं, प्रदेश के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच आमजन को निर्बाध पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित के आधार पर काम कर रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग प्रदेश में पेयजल व्यवस्था की लगातार निगरानी कर रहा है और अधिकारियों को निर्देश है कि पानी से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान हो तथा किसी इलाके में संकट की स्थिति न बन पाए। जरूरत वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त टैंकरों के माध्यम से भी पानी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग जल संरक्षण, पाइपलाइन व्यवस्था को मजबूत करने और जल निकासी प्रणाली सुधारने पर भी काम कर रहा है। साथ ही लोक निर्माण विभाग सड़कों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण और यातायात सुविधाओं के सुधार से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित कर रहा है।

शतों अक्सर स्कूलों की शिक्षा में बैठा कोई बच्चा आसमान में उड़ते रॉकेट को देखकर वैज्ञानिक बनने का सपना बुनता है। कोई उपग्रहों की दुनिया में जाना चाहता है, कोई नई खोज कर दुनिया बदलने की कल्पना करता है, लेकिन सपनों और हकीकत के बीच अक्सर अवसरों की कमी दीवार बन जाती है। अब विज्ञान में रुचि रखने वाले ऐसे लाखों विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा मंच सामने आया है। CBSE ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2026-27 को लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए इच्छुक विद्यार्थी 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। देश भर के कक्षा 6 से 11 तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकेंगे। इसके लिए प्रति विद्यार्थी ₹200 शुल्क रखा गया है। खास बात यह है कि विद्यार्थी चाहे तो स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्कूलों के माध्यम से ग्रुप रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकेगा। विभिन्न चरणों में विद्यार्थियों की प्रस्तुति क्षमता, वैज्ञानिक समक्ष समझ और रचनात्मकता और नई सोच को भी परखा जाएगा।

आइए दोस्तों अब मौसम का हाल जान लेते हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं कि मौसम का मिजाज कैसे चल रहा है। नौतपा शुरू हो चुका है और सभी को सलाह ये दी जाती है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बाहर निकलना ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, अपने घर में ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। श्रोता, नौतपा के पहले ही दिन गर्मी के तीखे तेवर रहे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को हिसार का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज होकर 43.3 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी के तेवर और तल्ख होने वाले हैं। हरियाणा में 28 मई तक मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। इस दौरान राजस्थान की ओर से आने वाले गर्म दक्षिण पश्चिमी हवाएं मैदानी इलाकों में आग बरसाएंगी। इससे दिन के तापमान में और बढ़ोतरी होगी और जिला भीषण लू की चपेट में रहेगा। दोपहर के समय बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। श्रोताओं, तपती गर्मी के बीच राहत की खबर भी है। 28 मई को पहाड़ों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके साथ राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बनेगा। इस वेदर सिस्टम के सक्रिय होने से जून की शुरुआत में दिन के तापमान में हल्की गिरावट आएगी, जिससे लोगों को झुलसाने वाली इस गर्मी से कुछ समय के लिए बड़ी राहत मिल सकती है।

दोस्तों, जहाँ बेपनाह मोहब्बत होती है, बेपनाह प्यार होता है, वहाँ इंतज़ार और गहरा होता है। इंतज़ार की घड़ियाँ कभी तड़पाती हैं, कभी रुलाती हैं, कभी सता

आती हैं तो कभी कभी कुछ नए एहसास दे जाती हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूलते हैं। दोस्तों, अब आपके एहसास हम तक पहुंचते हैं और हम इंतजार करते हैं आपके संदेशों।

अपनी दोस्त क्षमा के साथ एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। और आपका इंतजार हम बखूबी समझ रहे हैं दोस्तों, आपका इंतजार है दो प्रश्नों के लिए। अब हम आपसे दो सवाल करेंगे और आपको दोनों सवालों के जवाब हमें लिखकर भेजने हैं। लिखकर भेजना है अपनी पसंद का नगमा, यानी कि आप 2-3 नगमे अपनी पसंद के लिखें, उसके साथ फिल्म का नाम लिखें, अपने शहर और गांव का नाम लिखें और फिर अपना नाम लिखें। तो पहले हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बताएंगे, 9729253272। नंबर एक बार पुनः सुनिए, 9729253272। और दोस्तों अब आप कागज और कलम लेकर तैयार हो जाइए और लिखिए हमारा आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के किस राज्य की लगती है? सवाल पुनः सुनिए, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के किस राज्य की लगती है? यह है हमारा आज का पहला सवाल। और अब हमारा आज का दूसरा सवाल, आईआईटी मद्रास जांजीबार कैंपस की निदेशक बनकर आईआईटी की पहली महिला निदेशक बनने वाली वह प्रोफेसर कौन है? आपको इनका नाम बताना है। सवाल एक बार पुनः सुनिए, आईआईटी मद्रास जांजीबार कैंपस की निदेशक बनकर आईआईटी की पहली महिला निदेशक बनने वाली वह प्रोफेसर कौन है? आपको इनका नाम बताना है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूं कि आपने हमारे दोनों सवाल अच्छे से सुन लिए होंगे और अब हमें इंतजार है आपके जवाबों का। तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं और तब तक आप सुनिए ये बहुत ही प्यारा सा नगमा, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, हमें आपके जवाब जो हैं वो मिल चुके हैं। सबसे पहले तो हम आपको हमारे जो दो प्रश्न थे उसके सही जवाब हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपके नाम बताएंगे, जिन श्रोता के हमारे दोनों जवाब सही हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। हमने आपसे पहला सवाल किया था, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के किस राज्य की लगती है? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। और हमारा दूसरा सवाल आपसे था, आईआईटी मद्रास जांजीबार कैंपस की निदेशक बनकर आईआईटी की पहली महिला निदेशक बनने वाली वह प्रोफेसर कौन है? इनका नाम है प्रोफेसर प्रीति अघल्यम। तो आपने हमारे दोनों जवाब सुन लिए होंगे और हमें जिन श्रोताओं के जवाब मिले हैं उनका नाम हम बताना चाहेंगे। ये हमारे श्रोता हैं, शेरड़ा तहसील भादरा से मंटू शर्मा, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। इनके दोनों जवाब जो हैं वो सही हैं। आपको मंटू जी बहुत बहुत बधाई। और हमारे अगले श्रोता हैं, बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग। आपके भी दोनों जवाब सही हैं गर्ग साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे नियमित श्रोता ये हैं, गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, कार्तिक और वेदांश। आपको भी सज्जन साहब बहुत बहुत बधाई, आपके दोनों जवाब सही हैं। और ये हैं गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। आपके भी शर्मा साहब दोनों जवाब सही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे श्रोता हैं जो अक्सर क्या मैं यूं कहूं कि हमेशा सही जवाब लिखकर भेजते हैं, गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अवनी अवाना, प्रियांशी अवाना, रियांशी अवाना, ओजस अवाना, अनाया अवाना, गुरदीप अवाना और बेबी कीरत अवाना। आपके भी दोनों जवाब सही हैं। आपको भी अवाना साहब बहुत बहुत बधाई कि आपके दोनों जवाब सही हैं। और जो सबसे पहले हमें जवाब लिखकर भेजा है वो हैं हमारे ये भी नियमित श्रोता हैं जो अक्सर हमें जवाब लिखकर भेजते हैं, सुंदर नगर हिसार से। इनका हमें सबसे पहले जवाब मिला है, ये हैं मयूर गुज्जर, पंकज गुज्जर, शिवम गुज्जर, प्राची गुज्जर, नैन्सी, सुलेख और सुरेश गुज्जर। गुज्जर साहब आपको बहुत बहुत बधाई, आपका जवाब हमें सबसे पहले मिला है। और आपने अपनी पसंद का नगमा सुनना चाहा है फिल्म विवाह से, कोई भी गीत हम आपको सुनवा दें, तो लीजिए आपकी पसंद, आपकी नजर।

0: श्रोताओं, हमें भी आपसे बेहद इश्क है और ये इश्क सर चढ़कर बोलता है, क्योंकि आपकी चाहत हमें कुछ नया करने का जज्बा देता है। दोस्तों, आज बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक कहूँ या ताज्जुब की बात कहूँ कि ऐसा हुआ है कि जिन श्रोताओं ने से हमने सवाल किए थे उनके जवाब, हमें तीन श्रोताओं के जवाब एक साथ मिले, कुछ सेकंड का फर्क रहा। इनमें थे सुंदरनगर से गुजर साहब, अवाना साहब और सज्जन साहब। आपके जवाब हमें स्क्रीन पे एक समय पर एक वक्त पर शो हुए, लेकिन कुछ सेकंड का फर्क रहा और सुंदरनगर से हिसार से मयूर गुजर साहब का जवाब हमारी स्क्रीन पे पहले शो हुआ, इसलिए हमने इनकी पसंद का नगमा आपको सुनवाया। और दोस्तों, अब हमारे कार्यक्रम का अगला सोपान जो है वो हम आपको बताएं, उससे पहले ये आवश्यक संदेश सुन लेते हैं।
1: दादी, कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये देख, तेरी समझदारी का फल।
4: आज मैं कहता है, स्मार्ट बनो,

0: 90.
1: दोस्तों, हम प्रेरक व्यक्तित्व में आज आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके हौसलों ने बहुत से बच्चों को एक नई उड़ान दी और जिनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। जी हाँ, इतिहास की लेक्चरर की अनूठी क्लास, मजदूर परिवारों के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। सरसोद सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इतिहास की लेक्चरर सुमन ने अनूठी मिसाल पेश की है। वह स्कूल की छुट्टी के बाद रोज नया इतिहास लिख रही हैं। 7 महीनों से वे सरसोद बालक गांव के रास्ते पर एक ईंट भट्टे के पास उन 25 बच्चों की तकदीर संवार रही हैं जिन्होंने कभी हाथ में पेंसिल तक नहीं पकड़ी थी। खेदर निवासी सुमन बताती हैं, एक दिन वे बस से स्कूल जा रही थी। रास्ते में एक भट्टा मजदूर का परिवार मिला जिसके साथ छोटे बच्चे थे। अनजान होने के कारण उन्होंने किसी से रास्ता पूछा तो सामने वाले ने मजाक में गलत रास्ता बता दिया। जब वे गलत बस में चढ़े तो कंडक्टर ने उन्हें डांटा और उतार दिया। बेबसी और डर देखकर मेरा दिल रो पड़ा। लगा कि इन्हें सबसे ज्यादा शिक्षा और सहारे की जरूरत है। उस दिन से तय कर लिया कि वह इन बच्चों के लिए कुछ करेंगे। कुछ दिन बाद स्कूल जब दूसरे रास्ते से जाने लगी तो रास्ते में एक ईंट भट्टा सामने आया जहां बच्चों को पहले 1 महीने तक रोज जेब से पैसे खर्च करके चॉकलेट बिस्किट बांटे। जब बच्चे इंतजार करने लगे तो उन्होंने खेल खेल में उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। अब बोर्ड पर खुद अक्षर और अपना नाम ये लिख लेते हैं।

दोस्तों, सुमन बताते हैं कि रोज सुबह 4 बजे उठकर अपने घर के सारे काम निपटाने के साथ भट्टा मजदूरों के बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। वे रोज घर से 12 टिफिन पैक करके लाते हैं ताकि पढ़ाई के साथ बच्चों को पूरा पोषण भी मिल सके और वे खुश होकर सीखें। तेज तपती गर्मियों में भी सुमन का ये कारवां रुकता नहीं है। स्कूल की छुट्टी के बाद वे रोज 1 से 1.5 घंटा इन बच्चों को देते हैं। हालांकि अब DPC ऑफिस से APC सुधीर वर्मा ने खुद इस जगह का दौरा किया और उनकी इस सकारात्मक पहल को देखते हुए बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कमरे की भी व्यवस्था करवा दी है। जब सुमन ने भट्टे पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो वे रोज घर लेट पहुंचते थे। शुरुआत में वे अपने पति से बहाना बनाती थी कि स्कूल में कोई जरूरी मीटिंग थी। जब पति को सच पता चला तो उन्होंने शुरुआत में टोका और कहा कि तुम पहले आंगनबाड़ी में थी, अब इतनी अच्छी नौकरी दी है तो चुपचाप नौकरी करो। लेकिन सुमन के अडिग इरादों और भट्टे के पास से गुजरने वाले गांव के बुजुर्गों ने जब पति को सुमन के इस नेक काम की तारीफ सुनने को मिली तो पति और सास दोनों इस नेक काम में सुमन के मददगार बन गए। दोस्तों, सुमन के इस हौसले को और इस जज्बे को हम सलाम करते हैं कि इन्होंने हद ही कर दी और ये हद उन्हें वहां ले गई जहां से नई शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, इसलिए हम कहेंगे हद कर दिया आपने।

दोस्तों, आपकी मोहब्बत की हद हम तक पहुंचती है और हमारी चाहत की हद आप तक आकर ठहर जाती है। दोस्तों, ये चाहत, ये मोहब्बत, ये बेशुमार इश्क हमें कुछ नया करने का आगाज देता है, अंजाम देता है और एक नया अंदाज देता है। फिलहाल आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त क्षमा के साथ FM 102.3 MHz पर कार्यक्रम नमस्ते हिसार। और दोस्तों, अब हम एक ऐसी प्रथा की बात करेंगे जो पूरी तरह प्रचलित है, ये भी हम नहीं कह सकते, और पूरी तरह विलुप्त हो गई है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं आज भी ये प्रथा चल रही है। जी हम बात कर रहे हैं घूंघट की। घूंघट एक वस्त्र या लटकता हुआ कपड़ा होता है जिसका उद्देश्य सिर या चेहरे के किसी भाग को ढकना या किसी महत्वपूर्ण वस्तु को ढकना होता है। यूरोपीय, एशियाई और अफ्रीकी समाजों में घूंघट का एक लंबा इतिहास रहा है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में ये प्रथा अलग अलग रूपों में प्रचलित रही है। रामायण और महाभारत में भी सिर ढकने का जिक्र नहीं है, जबकि महिलाएं प्राचीन काल से ही साड़ी पहनती आ रही हैं, लेकिन वह भी चेहरा नहीं ढकती थी। घूंघट का चलन मध्यकाल से शुरू हुआ। जब मुगल भारत आए तो पुरुषों ने अपनी महिलाओं की उनसे सुरक्षा के लिए घूंघट प्रथा शुरू की। दुल्हन घूंघट के पहनावे के सबसे पुराने हिस्सों में से एक है, जिसका इतिहास ग्रीक और रोमन काल तक माना जाता है, जिसका उद्देश्य दुल्हन को बुरी आत्माओं से छिपाना था जो उसकी खुशी में बाधा डालना चाहती थी या उन आत्माओं को डराकर भगाना था। घूंघट प्रथा का इतिहास सदियों पुराना है और उसके कई कारण हैं, जिनमें मध्यकालीन भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पितृसत्तात्मक समाज में लज्जा और मर्यादा का प्रतीक होना और कुछ हद तक सम्मान और शिष्टाचार के रूप में भी इसे देखा जाता था। श्रोतम, घूंघट पहनने की प्रथा का इतिहास प्राचीन रोम और ग्रीस तक जाता है, जहां दुल्हनें अक्सर लाल या लोह के रंग का घूंघट पहनती थी जिसे फ्लेनियम कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये उन्हें ईर्ष्यालु निगाहों और दुर्भाग्य से बचाता है। भारत में घूंघट प्रथा की शुरुआत मुख्य रूप से मध्यकाल 12वीं व 13वीं शताब्दी के दौरान हुई। प्राचीन वैदिक काल में ये प्रथा मौजूद नहीं थी, उस समय महिलाएं स्वतंत्र रूप से रहती थीं। इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में भारत पर हुए भारी आक्रमणों और अस्थिरता के समय महिलाओं की सुरक्षा के लिए घूंघट प्रथा की शुरुआत हुई। माना जाता है कि उस समय पर्दा प्रथा और अन्य मध्य पूर्वी संस्कृतियों के प्रभाव में उत्तर भारत में यह प्रथा हिंदू समाज के पहनावे और रीति रिवाजों का हिस्सा बन गई। लेकिन दोस्तों, कहते हैं घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। क्या आप मानते हैं? भाई, हम तो मानते हैं।

दोस्तों, आपका दीदार तो हम मन की आंखों से कर लेते हैं और हमारा दीदार आप एहसासों से कर लेते हैं। ये एहसास ही हैं जो दोस्तों हमें एक दूजे के संग बांधे हैं। ये चाहत, ये मोहब्बत, ये इश्क हमें एक दूसरे से जोड़े हैं। मैं ये चाहती हूँ दोस्तों कि ये चाहत, ये मोहब्बत, ये बेशुमार इश्क यूं ही बना रहे और हम आपके लिए लेकर आते रहें एक नए अंदाज के साथ, एक नए लुत्फ के साथ, एक नए आगाज के साथ आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्यक्रम। तो आज अपनी दोस्त क्षमा को इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। नमस्कार दोस्तों।

श्रोताओं अभी कार्यक्रम नमस्ते हिसार FM 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी हिसार है। FM 102.3 MHz पर आइए श्रोताओं विविध भारती के सदाबहार सुरीले कार्यक्रम सुनाने के लिए अब आपको लिए चलते हैं।

दुर्गा माँ। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर, चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की आवाजों में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा था और उन्हीं का संगीत। रंग तरंग में ये अगली पेशकश। जॉगर्स पार्क फिल्म से जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम रंग तरंग।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में मुकद्दर का सिकंदर सिएगी। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है, प्रकाश मेहरा ने इसे लिखा।

हाँ ये क्या है जनाब जी। हाँ ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनोखी अदा, फिल्म का नाम था मजरू सुल्तानपुरी में से लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

महालक्ष्मी और शान की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे और वेडनेसडे फिल्म से इरशाद कामिल ने इसे लिखा था, संजय चौधरी का म्यूजिक। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम दीवाना में, फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का म्यूजिक।

0: भूपेन हजारिका को आप सुन रहे थे इस फिल्म रुदाली से, गुलजार ने इसे लिखा था और भूपेन हजारिका का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: यह है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थी। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम

0: राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

आज यादों की महफिल में वो गीत जिनमें इंतजार है, याद है, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल और यादों की महफिल के बाकी के गीत इस अंतराल के बाद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज वो गीत जिनमें इंतजार, याद, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है।

आशा भोसले, भूपेंद्र की आवाजों में ऐतबार फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बप्पी लहरी ने संगीत दिया था और हसन कमल ने इसे लिखा। एक और इंतजार में डूबा नगमा जगजीत सिंह की आवाज में।

आपकी कसम इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा था आर डी बर्मन की तर्ज थी।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहार खिली तनिया।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से स्वतः आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: विविध भारती से आप सुन रहे थे प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। सबसे पहले आपके प्यार भरे मैसेजेस, संदेशों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है। उसमें आपको एक शब्द चुनने होते हैं, एक नहीं कई शब्द चुनने होते हैं, और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेशों से समझ में आ रहा है कि काफी सारे शब्द, काफी सारे गीत आप चुन चुके हैं और एक लिस्ट भी तैयार कर ली है जो कि मैंने देख ली है। लेकिन उन श्रोताओं के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, आपके लिए इस इबारत को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, ठंडा हवा का झोंका हर पल तुम्हारा एहसास दिलाता है, तुम पास हो या ना हो मेरा दिल तुम्हारे करीब रहता है, तुम्हारी आंखें जैसे सागर की गहरी सी बात, तुम्हारी नजर में छुपी रहती है मेरी हर बात, एक पंछी सा दिल मेरा तुम्हारे पीछे उड़ता है, मोहब्बत के पंख लगा गगन तक जुड़ता है, वक्त की दूर राहों पर तुमसे ही ये वादा है, तुम्हारे साथ ही छांव में हर दर्द आधा है, सपना बनकर तुम ही तो आए थे दबे पांव मेरी जिंदगी में, तुम ही तो हो मेरी बंदगी में, ये दीवाना दिल आज भी तुम्हारी राहें तकता है, बयार चले तो लगता है तू पास ही रहता है। जी हाँ, ये थी इबारत और आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच नहीं करती, फिर भी आप फेसबुक पर इन शब्दों से जुड़े गीत लिख सकते हैं, हो सकता है हम उन्हें शामिल कर दें, है ना।

श्रोताओं, अभी आप विविध भारती के सदाबहार सुरीली कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र लिए चलते हैं। प्रतीक्षा के हल्के से पल हमारे साथ।

0: ভদ্রতা কেন্দ্রে হবে।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा में गोस्वामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध गिरी की अगुवाई में दो

0: दर्जन से अधिक नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली ने पंचकुला स्थित प्रदेश कार्यालय पंचकमल में डॉक्टर सुबोध गिरी सहित सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर श्री बड़ौली ने कहा कि भाजपा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। वहीं डॉक्टर सुबोध गिरी ने कहा कि भाजपा की राष्ट्रवादी सोच और संगठन की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने साथियों सहित भाजपा में आने का निर्णय लिया। करनाल में महर्षि कश्यप जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कल इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अरविंद कल्याण ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम की शुरुआत महर्षि कश्यप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की। इस अवसर पर श्री अरविंद कल्याण ने कहा कि महर्षि कश्यप भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के महान ऋषियों में से एक थे। उनका जीवन समाज को ज्ञान, सद्भाव और सेवा का संदेश देता है।
1: महर्षि कश्यप जी जो सप्त ऋषि में से एक, उन्होंने समाज की एकता का सूत्र पर्यावरण के नाते अगर हम देखें कि उनकी जो सीख है, जो दृष्टि जो है, जो एक परिवार वसुदेव कुटुंबकम, ये एक हमारे महापुरुषों की सोच रही है हमारी प्राचीन संस्कृति में। और आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम समाज की एकता के ऊपर बल दें और हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने का काम करें और अपनी भावी पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। और उसके लिए पर्यावरण की रक्षा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
0: श्री कल्याण ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को महापुरुषों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे पर जोर देते हुए कहा कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब सब लोग मिलकर काम करते हैं। श्री कल्याण ने सभी को ऋषियों के बताए मार्ग पर चलते हुए पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन की अपील भी की। हरियाणा सरकार ने अपनी अनुग्रह वित्तीय सहायता योजना का दायरा बढ़ाते हुए सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के दिवंगत अंशकालिक कर्मचारियों के परिवारों को भी 3 लाख रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ये लाभ पहले केवल एडहॉक दैनिक वेतन भोगी और अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के परिवारों को दिया जाता था। अब सरकार ने इस योजना में अंशकालिक कर्मचारियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों, नागरिक विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न बोर्डों और निगमों को निर्देश जारी किए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी 2 दिन तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 28 मई से मौसम में बदलाव से भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक शिवेंद्र सिंह ने बताया कि 28 मई के बाद तापमान में गिरावट आएगी।
2: देखिए, जो आने वाले 2 दिन है उनमें तो ये गर्मी बरकरार रहेगी। ये हीट वेव वाली कंडीशंस जो है हमारे रीजन में कंटिन्यू करेंगी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। उसके बाद 28 तारीख से हम एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस और मॉइस्चर फ्लक्स जो आ रहा है ईस्टर्ली विंड के चलते, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी 28, 29, 30 को रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा फेली वाइड रेनफॉल एक्टिविटी होगी, जिसके चलते हमारे जो करंट अबव नॉर्मल टेम्परेचर फॉल कर जाएंगे और हमारा हीट वेव हटने के चांसेस हैं पंजाब हरियाणा से।
0: हरियाणा के कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कल करनाल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने बताया कि बैठक में रखे गए 14 मामलों में से 9 मामलों का समाधान कर दिया गया, जबकि 5 मामलों को लंबित रखा गया है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन देशों से भारत तेल खरीदता है वहां आपसी विवाद चल रहा है, विवाद समाप्त होने के बाद कीमतों में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि तेल के दाम मांग और आपूर्ति पर निर्भर करते हैं तथा कंपनियां भी इस दिशा में प्रयास कर रही हैं कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। खाद की उपलब्धता को लेकर मंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों को यूरिया और DAP की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
3: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.3 MHz पर। आइए श्रोताओं, विविध भारती के सदाबहार सुरीले कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपको ले चलते हैं।
4: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन खूबसूरत संदेशों के लिए।

फिलहाल इस गीत के साथ ही मैं आपको एक काम भी दे रही हूँ। जी हाँ, आपके लिए एक पहेली है। पहेली नहीं, आप अपने दिल की बात कह सकते हैं मुझसे, और वो ये है कि जब हम ये गीत सुन रहे थे, जब चली ठंडी हवा, तो तन को ठंडक देने के लिए इस झुलसाती गर्मी में बहुत से उपाय हैं। फ्रिज है, एसी है, पंखा है, बहुत कुछ है, लेकिन दिल की ठंडक और दिमाग को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, बताइए मुझे। जी हाँ, दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए आप क्या करते हैं इस गर्मी में, आप मुझे बताएं। तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की ओर।

सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? और बहुत से लोगों ने इसके डिटेल्स भेज दिए हैं। नहीं, इतना आसान नहीं होने वाला है, हम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आज। बिल्कुल, आप हैं आज मेरे यानी अनुराधा के संग आज इस सुरीला सफर में, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जो मैंने पूछा था कि दिमाग को और दिल को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, दिल और दिमाग को ठंडा करने के लिए हम रेडियो विविध भारती सुनते हैं, विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनते हैं सुबह से रात तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार में दिल एक आजाद पंछी की तरह हो जाता है, जो सारे बंधनों को तोड़कर सिर्फ अपने हम सफर की तरफ उड़ना चाहता है। इस एहसास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जिंदगी के हर बड़े से बड़े दर्द को आधा कर देता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि उनकी लिस्ट हमारे लिस्ट से मैच खा गई है, मैच कर गई है, और दो गीत जो है उनके मुताबिक बज गए हैं। बिल्कुल, और बाकी लोग भी आपकी लिस्ट में जो भी गीत है मुझे लिख भेज सकते हैं, हो सकता है हम उसे शामिल कर लें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल और दिमाग को ठंडा रखने के लिए गाने सुनते हैं, अच्छे विचार पढ़ते हैं और कुछ नया चीज देखते हैं जो हमें दिल को सुकून देता हो और मन को शांति देता हो, और टीवी भी देख लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, साथ ही साथ रेडियो सुनते हुए रसोई में काम भी हो जाता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और साथ ही विविध भारती के कार्यक्रम और सम्मानीय उद्घोषकों की मधुर आवाज दिलो दिमाग में ठंडक दे देती है। थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत मैसेजेस के लिए। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, सागर जैसी आंखों वाली, इसके बारे में क्या कहा जाए? तो बहुत से गीत है जिन पर जिनमें आंखों की प्रशंसा की गई है, तो इस सागर जैसी आंखों वाली का मतलब क्या है? इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। आप मुझे लिख भेजें, पढ़ते हैं कि आप कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं अभी मैसेजेस में। सागर जैसी आंखों वाली का मतलब, या इसको और किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मुझे बताइए। फिलहाल लिस्ट का ये तीसरा गीत।

बिल्कुल सही कहा, नज़ारे हम क्या देखें, और हम आपके मैसेजेस देख रहे हैं बस, उसके अलावा हमें ठंडक किसी से नहीं मिलती। एकदम सच कहेंगे, एक श्रोता लिखते हैं, दिल को ठंडक देने के लिए हम तो बस छत पर जाकर पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं, और जब वो एक एक करके पानी पीते हैं तो लगता है मानो इस गर्मी से हमें ठंडक मिल गई हो, और रात में इतने शीतल चंद्रमा को देखकर मानो दिल भीग जाता है, क्योंकि उसकी चांदनी में बड़ी ठंडक होती है। और आपने कहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब श्रोताओं का जिन्होंने आज मेरा स्वागत किया इस प्रोग्राम में। तो मैं सबको एक एक मैसेज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सबको, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार भरा शुक्रिया। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि दिल का ये छोटा सा एहसास ही तो है जो हमें इंसान बनाए रखता है, कभी कभी ये एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आता है और मन के सारे कोलाहल को शांत कर देता है। ये किसी पुराने गाने को सुनकर अचानक बचपन की गलियों में लौट जाना चाहता है, या किसी अजनबी के लिए मन में उपजी सहानुभूति का एहसास। हमारे श्रोता लिखते हैं, दिल और दिमाग तो अच्छे गाने सुनकर ठंडे हो जाते हैं, बाकी राजस्थान में इतनी गर्मी है कि एसी की हवा भी ठंडक नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का हाल हर जगह इस वक्त बहुत एक्सट्रीम पर है। दिल को ठंडा रखने के लिए अच्छे गाने सुनती हूँ और किस्से कहानियां पढ़ती हूँ, और गर्मियों के दिन काफी लंबे हो जाते हैं, ऐसे में गानों और किताबों का संयोजन दिन को खुशनुमा बनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छाछ, शिकंजी, पुदीना सौंफ की शरबत, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, संतरा, ठंडे फल और पेय पदार्थ शरीर और मन को ताजगी और सुकून से भर देते हैं, ताजगी और सुकून से भर देते हैं। बिल्कुल, और मधुर संगीत तो है ही।

उस पर सोने पर सुहागा। दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए हर मौसम अजीज अदरक इलायची वाली चाय इन्हें चाहिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और साथ ही अदरक इलायची की चाय कई लोगों को लगता है कि गर्मी करती है, पर जिन्हें चाय का प्रेम है, चाय प्रेम में जो पड़े हैं उनके लिए वो ही ठंडक देती है ना।

ठंडा रखने के लिए नियमित मेडिटेशन यानी कि ध्यान रखना, ध्यान करना बहुत जरूरी है। गहरी सांस लेने से व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना और भरपूर नींद लेना, ये सब प्रभावी तरीके हैं। तनाव, गुस्सा और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और बस मेंटल कामनेस के लिए कुछ करना चाहिए। साथ ही काफी लंबा मैसेजेस और काफी सारे इन्होंने हमें तरीके बताए हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए मेंटली इमोशनली, तो जरूर ठंडा रखते हैं और एक और ठंडक यहां आप तक पहुंचाते हैं इस गीत के द्वारा। लेकिन हाँ, अगले गीत तक जाने से पहले अभी जो गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म का, जिस जोड़ी पर वो फिल्म आया गया था उस गीत में जो जोड़ी थी उसमें जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, जो मेन लीड है, उसका फिल्म में क्या नाम है, उसका कैरेक्टर नेम क्या है, आप मुझे बताएंगे? चलिए तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

सोनू निगम की आवाज में ये गीत संघर्ष फिल्म से आप सुन रहे हैं और जतिन ललित ने इसे संगीत दिया, समीर ने इसे लिखा। सुरीला सफर में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। हमारा एक बहुत ही खास मैसेज मुझे लगता है एक आया है कि इस कार्यक्रम से हम बुजुर्ग गाहे बघाए जुड़े हैं। ये मैं नहीं कहता कि कार्यक्रम सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही है, पर चूंकि गाने पुरानी फिल्मों के बजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में दिल की शांति और दिमाग की ठंडक ज्यादा जरूरी है, इसीलिए कार्यक्रम से जुड़ते हैं। अब हमारे दिन दुपट्टा और दिल की आशनाई से बहुत दूर चले गए हैं, इसीलिए हमारे लिए कार्यक्रम में दिल से जुड़ना मुमकिन नहीं होता है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं रखती हूं क्योंकि विविध भारती में हर वर्ग के लिए, हर उम्र वर्ग के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग गीत है, अलग अलग थीम्स है जिस पर प्रोग्राम्स चलते हैं। तो आप जुड़े रहें विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि का जो मन करे वो अपनी कल्पना में वैसी ही उपमा दे सकता है। कभी आंखों की तुलना कभी झील से कभी सागर से, जहां मन डूब सा जाता है और ठहर सा जाता है, बस इसीलिए कवि आंखों को इस तरह से सोच लेता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि गांव में मिट्टी के घरों में खपरेल छत के नीचे बहुत ठंडक मिलती है, प्रतिदिन गोबर से लीप देने से घर शीतल रहता है, बचपन ऐसे घरों में ही गुजरा है। हमारे श्रोता कहते हैं कि कवि हृदय किसी भी शब्द से कुछ भी गढ़ लेते हैं। सागर जैसी आंखें मतलब सुंदर गहरी आंखें, जिसका फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि उपमा। जब कहां आंखें छोटी छोटी और सागर अथाह सा होता है, फिर भी कितनी खूबसूरती से दोनों की तुलना रवि कवि माफ कीजिए कवि कर लेते हैं। सागर जैसी आंखों वाली का हम बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं, जैसे आंखें इतनी गहरी हो जिसका सागर जैसा ही ओर हो ना छोर हो और उसमें गोते लगाने को दिल करता हो। सागर जैसी आंखों पर बहुत से मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। सागर जैसी आंखों पर बहुत रिसर्च कर डाली है आप सबने, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मैसेज के लिए, सागर जैसी आंखों के लिए। और मैं ये कहूंगी कि बहुत क्रिएटिविटी झलक रही है हर एक संदेश में, और साथ ही पता चल रहा है कि हमारे जो श्रोता हैं वो कवि से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, इस चीज को बताया है, वो बहुत खूबसूरत है। और साथ ही साथ हमने ये पूछा था कि कभी कभी फिल्म में जो इस गीत में, जो गीत हमने आपको सुनवाया, उसमें जो नजर आती है जोड़ी, उसमें हीरोइन का नाम, एक्ट्रेस का नाम क्या है, तो बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, पिंकी कपूर। जी हाँ, और साथ ही विक्की। आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहिए और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कि खो जाएं हम। तो इसी बात पर मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो ये लिस्ट है कितनी मेल खाती है, ये भी तो मुझे बताइए। कौन कौन से शब्द आप ढूंढ चुके हैं और उससे जुड़े गीत जो अब तक आपसे मेल खा चुके हैं, आपकी लिस्ट से मेल खा चुके हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही ये भी

बताना चाहूंगी कि जो हमारे श्रोता हैं हमारे साथ, उनकी लिस्ट गीतों की मैच खाए ना खाए, लेकिन हमारी जो सोचने की जो एक तरीके की सोच है वो जरूर मेल खाती है, क्योंकि जब मैं गाना यहाँ पे प्ले करती हूँ उससे पहले उसके जवाब आ चुके होते हैं, यानी कि मेरे सवाल पूछने से पहले ही आप उसका जवाब लिख देते हैं। जैसे कि ये गीत जब अभी चल रहा था तो आपने कहा कि दूसरा आदमी फिल्म का नाम है और ऋषि कपूर और राखी पर फिल्माया गया है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा। सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या कहें, थोड़ी सी पहेली को थोड़ा और ट्रिकी बनाते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये दूसरा आदमी फिल्म से जो गीत अभी आपने सुना, इसमें राखी और ऋषि कपूर तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में दो से तीन अभिनेता अभिनेत्री भी थे, तो आप उनके नाम लिख भेजें कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और राखी के अलावा और कौन कौन है, ये जरूर मुझे भेजिए। अभी हम चलते हैं आपके संदेशों पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें याद आ रहा है कि शादी के 15 दिनों बाद ही, जब उनकी शादी हुई थी उसके 15 दिनों के बाद ही उन्हें ट्रेनिंग पर जाना पड़ा था और करीबन 2000 किलोमीटर दूर, और अपनी धर्मपत्नी से बिछड़ना पड़ा था। उस वक्त उन्हें ये इबारत की ये जो सब बातें आज हैं वो कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर पा रहे हैं, उसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो बिछड़ना याद आ रहा है। जी हाँ, प्यार में बिछड़ना और उसके बाद फिर से मिलना, उसका मजा ही कुछ और होता है। साथ ही साथ सागर जैसी आंखों से आशिक बातों को बिना बोले सामने वाले की आंखों में देखकर उसकी भावनाओं को समझना, ये भी कहा जाता है सागर जैसी आंखों वाली। साथ ही और एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सपनों की बातें भी होंगी तो कुछ बातें हमारी भी। सपने देखना इंसान के मन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। ये वो दुनिया है जहां हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी रोक टोक के जीते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और हिम्मत देते हैं और उम्मीद जगाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश लिखा है आपने। तो चलिए हम आते हैं अपने सवाल पर कि जो गीत आपने सुना दूसरा आदमी से, उसमें और कौन से अभिनेता या अभिनेत्री हैं, मुझे बताएं। चलिए चलते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

मोहब्बत बड़े काम की चीज है, त्रिशूल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में खयाम का संगीत था, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। और इस गीत के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप इस गीत से भी कुछ घुमा फिरा कर सवाल पूछ लेंगे तो हम एकदम तैयार हैं, पर हो सकता है कि आपने ऐसा लिखा तो अब हम कुछ और घुमा फिरा कर पूछते हैं, है ना? फिलहाल जो सवाल हमने पूछा था, दूसरा आदमी, उसमें कौन कौन है? कई लोगों ने हेमा मालिनी लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही है, है ना? ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी, शशि कपूर, परीक्षित सहनी और देवेंद्र वर्मा, ये इस फिल्म में दिखाए गए मेन लीड्स में। और साथ ही साथ प्रमिला चोपड़ा ने भी एक गीत गाया है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और हमारे श्रोताओं की प्रशंसा करना चाहूंगी मैं कि वो सिर्फ गाने पर ध्यान नहीं दे रहे, सवालों पर ध्यान नहीं दे रहे, साथ ही साथ जो फिलर बज रहा है वो क्या है उसकी डिटेल्स भी मुझे भेज रहे हैं। साथ ही साथ गीत के शुरुआत में जो होता है इंट्रो म्यूजिक जिसे कहा जाता है, उसके बारे में भी मुझे लिखकर भेज रहे हैं। और ये दर्शाता है कि आप संगीत से कितने करीब हैं। और विविध भारती को ऐसे श्रोता मिले हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप संगीत की जानकारियां साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ एक श्रोता लिखते हैं, क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाएं। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, घर के पास एक जंगल है अक्सर, और उस जंगल की जानिब निकल जाती हूं अक्सर। वहां चीड़ के ऊंचे दरख्त हैं, हवा के झोंके हैं, वो जब झूमते हैं तो उनकी नुकीली पत्तियां साए साए करती है, वो आवाज सुकून देती है मन को। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम तो ऐसा है कि घर से बाहर जाने को मन ही नहीं करता, और कवि न जाने क्या क्या कह रहा है। विविध भारती के सारे कार्यक्रम हर वर्ग तथा हर उम्र के लोगों के लिए बने हैं, खास करके पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद विविध भारती की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है और श्रोता सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण अपना भविष्य दांव पर लगाना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। और साथ ही साथ हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके घर पर कुछ काम चल रहा है, घर का कुछ काम चल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, और थोड़ी थोड़ी देर में लगता है कि आराम कर लें। साथ ही साथ आम का पना, छाछ, कभी नींबू पुदीने का शरबत, बस ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते रहे। और साथ ही साथ ये जो गीत है इनके साथ हम बने रहें। बिल्कुल, चलिए आपको ले चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अगला गीत जो अभी आप सुनेंगे, क्या बता सकते हैं कि वो कौन सी फिल्म का गीत है? जी हाँ, ये जो गीत है ये कौन सी फिल्म से लिया गया है, मुझे बताएं।

रात कली ख्वाब में आई और फिल्म का नाम था बुढ़ा मिल गया। जी हाँ, और बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यही फिल्म का नाम है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि नवीन निश्चल पर ये फिल्म आया गया, गीत है साथ ही अर्चना है इस फिल्म में, और बिल्कुल सही। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आप बहुत ही आसान सवाल आपने ये पूछा, विविध भारती के श्रोताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि अगले प्रोग्राम में और कठिन से कठिन सवाल लेकर आएंगे। लेकिन ये भी है कि जब आपके जवाब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आपसे एक जुड़ाव महसूस होता है। बहुत ज्यादा कठिन सवाल लेकर आएंगे तो हो सकता है आपके मैसेजेस कम आए मुझ तक, है ना। साथ ही साथ हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आज आपके द्वारा ये पहला प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका नाम है सुरीला सफर, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोचक प्रेजेंटेशन की आपने, प्रस्तुतिकरण किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मुलाकात होती रहेगी इस शो में आपके साथ, और जितने भी श्रोता हैं जिन्होंने भी हमारे बारे में लिखा है, आज इस प्रोग्राम के बारे में लिखा है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक श्रोता हमारी लिखती है कि हवाओं के नर्म झोंके हर पल तुम्हारा ही एहसास दिलाते हैं, दूरी में सुख भी और विरह भी, जैसे पहाड़ का रिश्ता बादलों से है वैसे ही मेरा रिश्ता तुमसे है। बहुत ही खूबसूरत ये मैसेज है, ये संदेश है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम की का जो आखिरी गीत है आप तक पहुंचाते हैं।

बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और ये गीत आप सुन रहे थे अमानत फिल्म से, साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आज की त्रिवेणी में चलने की बातें। साथियों, चलती हुई हवा बंद हो जाए तो बुरा हाल हो जाता है। चलती हुई सड़क पर अगर कोई कार खराब होकर थम जाए तो पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जाता है, यहाँ तक कि कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। और अगर चलती हुई घड़ी रुक जाए तो समय का पता ही नहीं लगता। समय के साथ चलना है तो घड़ी को भी चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन की घड़ी हो या शरीर की घड़ी, दोनों का चलते रहना ही अच्छा है। एक लंबी कतार भी धीरे धीरे छोटी हो जाती है, क्योंकि उसमें खड़े लोग लगातार आगे चलते रहते हैं। चलना हमें वर्तमान से जोड़ता है और आने वाले कल की ओर ले जाता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि चलती का नाम ही गाड़ी होता है। चलना जीवन की निशानी है और सक्रियता की पहचान है।
1: बाजू।

चलना एक ऐसी क्रिया है जो शरीर के साथ ही जीवन के लिए भी जरूरी है। चलते रहने से जहाँ शरीर के कलपुर्जे रवा होते हैं, वहीं जीवन में भी गति बनी रहती है। इसी गति के कारण हमें याद रहता है कि हम अचल नहीं हैं। अगर कभी गति की लय टूट जाए, चलना छूट जाए, रास्ते बंद हो, तो जो थम जाता है वो पीछे ही रह जाता है। मगर जो कदम बढ़ाकर चलने की कोशिश करता है तो वो फिर रवानगी में आ जाता है। जीवन अबाध चलता रहे इसके लिए जरूरी है कि अगर आसपास कोई थमा हुआ या अचल दिखे, जो मन से टूट गया हो, तो उसे आश्वासन का हाथ देकर एक नई ऊर्जा दी जाए, उसे भी साथ चलने को प्रेरित किया जाए। रुके हुए को चलने का उत्साह देने से ही तो सबकी जिंदगी चलती रहती है।

चलने का मतलब सिर्फ कदम बढ़ाना नहीं होता। कई बार मन ही मन हम कहां कहां पहुंच जाते हैं। जिस तरह नदी की धारा स्वच्छ और निर्मल रहती है क्योंकि वो निरंतर बहती है, रुके हुए पानी में तो काई जम जाती है और वो किसी काम का नहीं रहता। उसी तरह चलना भी एक ऐसी रिसाइकलिंग प्रक्रिया है, मन पर काई नहीं जमने देती बल्कि मन को निर्मल कर विचारों को बड़ी सुंदरता से सवार देती है। चलना एक किस्म की गतिशीलता है जो आचार व्यवहार और विचारों को लगातार खंगालती रहती है। तभी तो कई बार लोग साथ ना मिलने पर भी अकेले ही चल पड़ते हैं और मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। यही तो जीवंतता है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते

0: even more important to the world.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमेरिका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं, इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: Action.
1: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 37वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कलाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x @EIRNews

0: हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष

0: 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुर्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आज के सदाबहार नगमे की पहली पेशकश अभी आप सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदामी ने से लिखा नौशाद का संगीत।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे इस गीत में तू नहीं और सही, फिल्म का नाम था, असद भोपाली ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में गीत श्री 420 से आप अभी सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। अगला गीत सदाबहार नगमे में लीजिए।

0: जब जब फूल खिले, इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज में साथी नंदा ने साथ दिया था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहर खिली तनी।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम सदाबहार नगमे का आखिरी नगमा। मधुमती फिल्म से आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें, शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।

0: की सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हूँ।
2: जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसे ही अपने आप बाहर निकल के आ अच्छा। जाती है, और जब सखी सहेली का मंच होता है और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई है, फिर क्या क्या बोलेंगी।
1: ये तो बात है ना। देखिए, दोपहर की जो गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की चूहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी मजाक की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस करने
2: महसूस करते हैं, और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं भाई अभी
1: अरे क्या बात करने वाली है आज,
2: क्या बोलने वाली
1: तो बताओ आज क्या बात करने वाले हैं।
2: देखिए, जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी खरीद के राशन पानी लाना है वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो घर संभालना है तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर।
1: मुझे लग रहा है मंजरी कि तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें ये सारी बातें कहकर गए हैं कि मंजरी मेरे आने तक ये सारे काम हो जाने चाहिए।
2: नागनी मैम, देखिए नागनी जी, क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती है ना, ये हर घर में होती है
1: जी।
2: कुछ मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी तो हम भी सोच सकते हैं कि भाई आपके घर में भी ऐसी चीज।
1: मेरे घर में तो ये हो ही रहा है कि हमारे घर के कुछ लोग जो बाहर घूमने गए हैं, हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं। हालांकि उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें ये सुविधा हम दे दें, क्योंकि हम घर पर ही हैं।
2: हम घर पर हैं और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि
1: आनंद भी आता है
2: और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है, वो उनके आने में अभी कर लेंगे। जब आखिर के दिन बचते हैं ना,
1: तब
2: दौड़ बचती है कि भैया अब कर लो, नहीं आएंगे तो फिर ये सुनने
1: वही अधूरापन मिलेगा, व्यवस्था मिलेगी।
2: मतलब कहने का मतलब है खुद से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल, ये तो है, अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे तो वो काम नहीं होता है। अब आप खुद आगे बढ़िए और बताइए कि आज हमारे विषय क्या है बातचीत के।
2: तो देखिए, हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जनवासे के किस्से हुआ करते थे, वो आप सभी के लिए ये चीजें महसूस करी होंगी। तो चुलबुले से किस्से हैं, रूठने मनाने के किस्से होते हैं, तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपने मेमोरी को और लिखिए। और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल, ऑनलाइन मार्केट प्लस शर्प क्रूज की सह संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो इसके बारे में हमारे सभी साथी सखियां सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजें।
1: हाँ, लिखिए ये कि क्या वो खुद कान की कच्ची हैं, ये भी लिखना जरूरी है। अभी क्या होता है, हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान की कच्चे मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे। वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते हैं,
2: आप बता सकते हैं कि फलाना अभी कान का कच्चा है।
1: हाँ, ऐसी जिंदगी में हमारे साथ हुआ कि कोई व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया। तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में, ऐसा बहुत बार होता है। हमारे अपने घर में कुछ लोग, हमारे अपने भाई बहन, अपने माता पिता भी हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं अरे भाई माँ, आपको पापा ने और आपने बात मान ली, तो आप कान की कच्ची हैं, उसका मतलब।
2: तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखकर भेजिए, जिसमें आपको भी मजा आए, हंसी है और हमें भी पढ़ के अच्छा लगे। और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम

0: हाँ तो मंजरी, अब हम अच्छे काम की शुरुआत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें आ गई, खत आ गए कहना चाहिए, खत लेके सदम तो ये कहना चाहिए, हमारे पास हमारे श्रोताओं के बहुत
0: खत आ गए हैं,
1: खत आ चुके हैं, और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाग्नि जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर जरूर दें, उसको देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
0: बिल्कुल, ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भाई आपको हम मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है,
1: आत्म सुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का

0: सम्मान करें तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं, जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद
1: हाँ,
0: कर
1: अपने घर में हम पानी और बिजली को बचाएं। कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग, पानी चलता रहता है नलों से लगातार। आपने देखा होगा छोटे शहर में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं। तो ये पानी का इतना दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि, और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं। हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं या कार चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सच बोलना सीखें, ईमानदारी अपनाना सीखें। हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उससे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी, हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचे कि कोई करे या नहीं, मुझे तो जरूरतमंदों की सहायता करनी ही है और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूं, तो हमें देख कर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए, आपके आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा।
1: बिल्कुल,
0: आपको आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की सोचिए।
1: बिल्कुल, कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है, यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से अच्छा व्यवहार करेगा। तो वही बात हमारे सामने होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय, रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू कर दें।
0: बहुत ही अच्छी बात लिखी है इन्होंने।
1: और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है, फिर मिलते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सिक्योर सखाओं का स्वागत है। और देखिए एक संदेश है, मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक श्रोता लिखती हूँ कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं

0: कृत्य करें, जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल, और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है, जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं, वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होती है वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते पर छोटे, उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय, ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम एक घंटे चलाएंगे,
0: बिल्कुल
1: तुम लोग छोटे हो, तुम लोग आधे घंटे चलाओ।
0: इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
1: जी बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल और बच्चे, तो
0: बच्चे
1: हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं।
0: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं, मम्मी तुमने एक घंटे चलाया मैं भी चलाऊंगा, तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे वही मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं, हमें चाहिए।
1: वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना। तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा, कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, करके तो देखिए। कहते भी हैं कि रात के सोने से पहले दो घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं, और सुबह उठने के दो घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने
0: बिल्कुल
1: लग जाती है। क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों, अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो जे आच रही तेनर न घनेरे।
0: क्या बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात लिखी है।
1: बिल्कुल,
0: तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो देखिए भाई ये गाना कितना सटीक है ना नंदाकिनी जी,
1: बिल्कुल
0: हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है
1: है ना।
0: तो ये सफल आप हंस रहे ना इसी बात पर कि मंजरी ने बस छेड़ दी बात है ना।
1: और ये ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती है
0: जी।
1: जिस खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती है,
0: बिल्कुल है। चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत के उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
1: तो राधिका गई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी है और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला है। और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस shopclues की सह संस्थापक है। वर्तमान में कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत
0: जी। और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गई।
1: उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से एमबीए की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया
0: जी। और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
1: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ shopclues की स्थापना की और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था। shopclues ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी किया
0: जी। और कंपनी की खासियत यह थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहां ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे shopclues भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब shopclues का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
1: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमियों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया और ये उपलब्धि भारतीय

महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बने। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी, उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था। लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से

0: अपने विश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में, और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, सीएमओ एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और सीईओ इंडिया अवार्ड 2016 में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है। चलिए एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं
1: तो मंजरी, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: हाँ तो मंत्री, हम भी आपसे यही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंत्री ऐसी है,
0: कान का कच्चा होना बहुत गलत बात है,
1: कान की कच्ची है भी नहीं। और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे के उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्चे वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते
0: विश्वास कर लेते।
1: तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
0: ऐसे कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं, उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है
1: जी। और कान के कच्चे होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए, वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना। कोई दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी, तो क्यों आप उसके उस पे जाते हैं।
0: बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो दमगम
1: बिल्कुल,
0: कि आप खुद अच्छे बने, है ना, खरा सोना, फिर आप दूसरे को परखें। और जब आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो पारखीपना होना चाहिए कि आप उसको परख लिए अपनी नजरों से, दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों के हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना, वो बहुत कान का कच्चा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है
1: जी। और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और वाकई जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी उस तरह से खराब होता है, वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
0: बिल्कुल पड़ता है।
1: पहले तो इंसान को मंदाकिनी जी अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, कोई मुझे कुछ भी कहे मैं
0: दिगा नहीं
1: सकते।
0: अपने किरदार को हमें मजबूत बनाना चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला इधर इधर ढुल गए उधर
1: नहीं गए, थाली का बैगन जिसे कहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए।
0: उसकी बात सुन ली उधर उसकी बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
1: बिल्कुल
0: कुछ नहीं रहा। तो आपके जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो देखते ही लोग आपकी करेंगे, नहीं ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है, ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है, और ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता, तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा।
1: और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है, क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कहीं सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं। क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं भरोसा कर लेते हैं बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं काम का पक्का होना चाहिए। हमारी सखी ने बहुत अच्छी सी बात लेकर भेजी,
0: बिल्कुल बहुत अच्छा। वही एक लिखते हैं हमारे श्रोता, कई दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
1: बिल्कुल सही बात है। लिखिए कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा हुए व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी जरूरत की बात को अपनी तरह खराब कर देते हैं, यानी आपकी जरूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए,
0: ऐसे लोग जो होते हैं जो बातों की होती है दो दोस्तों के बीच में उसको भी वो हटा देते हैं।
1: मतलब दोस्ती तो किनारे कर देते हैं और अपना मतलब निकालने के लिए अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते हैं।
0: वही एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते हैं।
1: जी सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजे। एक गीत सुनते हैं फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
0: वाह।

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने
1: से। अच्छा, क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहां ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रखते हो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा दिए जाते थे, मौसमी फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीजें कम पड़ गई हैं, तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डाली है। बेचारे इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जनवासे में अक्सर होते थे।
1: बिल्कुल,
0: और
1: ये एक रोचकता बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है शादी विवाह में,
0: बहुत अच्छा माहौल होता था
1: और छुटपुट मजाक होती है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है तो कंघा और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल लगाना नहीं है,
1: से वो जनवासा होता था। दिखावटी दिखावटी
0: नहीं होता, मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी होते थे और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस है, इसमें तो 6 पीस है, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ, इस तरह के भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाते थे। तो उनका भुगतान जो कहते हैं ना वो लड़की
1: वाले ही करते थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गाँव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गाँव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था, उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी बड़ी यादें हैं
1: सबकी, आपने कहा और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की इज्जत करते थे, पापा वहाँ लेके जाओ जन्मासी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती है, लेकिन जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी।
0: अपने हिसाब से देखिए सब लोग अच्छा ही करते थे
1: और मन से
0: करते थे, और जिसको कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए,
1: बिल्कुल
0: इस तरह के भी उनको
1: सुविधाएं मनाने की बातें भी बहुत होती थी। नाराज हो जाता था उसको मनाया जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जनवासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं है, तो बहुत सारी चीजें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा, इसलिए फुफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल के रखना पड़ता था कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे समधी दूल्हे के पिता फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बरातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, बड़ा मजा आता था। लेकिन गाने बहुत
1: ये गीत शादी विवाह की जान होते थे।
0: सही बात।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और

0: खुनों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा। आधी रात के बाद चाय का होता है, जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं, तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
1: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासी का बड़ा महत्व है, यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, इससे कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था। ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बराती हो तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग, बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत कर देते थे।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता लिखती है कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है, जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी, उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी, लेकिन कुछ हिस्सा टीनशेड से ढका था, जिसमें से जनवासी में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे, जिसे आज भी वो याद करते हैं।
1: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्माष्टमी ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है, या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है, लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से, जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माष्टमी वो स्थान है जहाँ पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है, अच्छी सी बात है। और जन्माष्टमी भी देखा जाता था कि कितनी पास है, कितनी दूर है, और वहाँ पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा, ये सब भी चीजें होती थी। और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
0: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना, हर चीज प्रोवाइड कराना, हर पूरा एक जिम्मेदारी।
1: बड़ा मजा भी आता था कि भाई अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूरी गर्म क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं परसा जा रहा है। तो इस तरह की जो थोड़े बहुत चूहलबाजी टाइप की भी होती थी, तो बड़ा यादगार दिन है वो।
0: बिल्कुल।
1: अभी तो जैसे कि अब व्यवस्था होटलों में हो जाती है।
0: हाँ, तो अब वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि होटल भी दूर दूर होते हैं और अभी कई चीजें बदल गई।
1: होटल में एक साथ खाना खा रहे हैं,
0: होटल में हो गई है, घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहाँ बैठकर गीत गाए जाते थे, पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए जाते थे, तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं।
1: लेकिन मुझे तो वो जनवासी वाले दिन बहुत याद आते हैं।
0: बिल्कुल याद।
1: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं, फिर बाकी बात करते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो मंजरी मुझे तो लग रहा है कि जनवासी में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जनवासी में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए तो हमने आंख बंद कर लिया, अंधेरा था चारों तरफ तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो चुके। बाद में जो भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रही है ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासे यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गांव में महीने में शादी थी, एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए, रात का सीमंत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटों ने बहुत समय में वहां आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान चौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के शरीर में लाल निशान बने।
1: बिल्कुल, जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया है कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासा के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है, अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जनवासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध उसी में चाय बना दी, अब तो यही है पी लो पी लो तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते थे गर्म पानी समझ के ही पी लो तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक
0: मजा था। वही श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मी होते हैं, यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल, और एक लिखते हैं शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा यह जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी तो वो तो किसी और का बगीचा है, आम लगे हैं बराती लगे तोड़ने में, अब वो फिर झगड़ा मच रहा है तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह के बड़े
0: रोचक किस्से जनवासी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं और अब हम सुन लेते हैं प्यारा सा गीत।
1: जी,

0: यस।
1: कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बरातियों का उतार का ठहरने की जगह।
2: शुभ महक रही है सांसों की रागनी में, कभी कभी ऐसा।
3: तो मंजरी आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखी और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई
1: बिल्कुल
3: है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे
1: आज वापस यादें हो गई ताजा। तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
3: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार है जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माय गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ। ये है पारसनाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है बांसुरी की इस मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है
0: जी।
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी हमें थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज अ स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूजिक एज अ म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया के यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
0: क्या
1: सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
0: अपने ही परिवार में वापसी है आपकी,
1: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग बैक।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी गायक पंडित अमरनाथ जी से अलग
1: है, बांसुरी वादक
0: जी। बिल्कुल, बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61 या 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं, जैसे बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है
0: जी।
1: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालना ही मुश्किल है। मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है,
0: और इन रागों के वाद्य
1: वृंद बनाना, वो भी और उनके चलन के आधार पे
0: जी।
1: अब सारे गामा पादा नीजा नीदा पा मागा देजा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
0: 80 लोग,
1: हाँ,
0: ये मायने
1: 80 आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
0: नगीने
1: हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के, अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए, जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं, और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पादा नीसा और SRGM, सारे
0: अच्छा,
1: गामा पादा,
0: दोनों नोटेशन करते थे वो
1: पिताजी करते थे, हाँ। सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे
0: जी जी।
1: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे तीन भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूजिक में नहीं है, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम तीन भाई हैं और दो म्यूजिक में हैं, एक म्यूजिक में नहीं है
0: जी।
1: तो मैं और पंकज नाथ जी, हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे, तो वहां से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में
0: बुनियाद पक्की हुई
1: एक तरीके से बोल लीजिए, वो ट्रेनिंग भी थी
0: जी,
1: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
0: मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी।
1: वो निकल ही जाता है बचपन में बचपन ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
0: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए उसके बाद जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है वो एक कुटुंबस
1: हाँ, अभी आर्टिस्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो
0: जी
1: तो और भी बदमाश
0: और भी तो आप क्या कारनामे करते थे?
1: हम लोग करते थे बचपन में
0: शर्मारे बता रहे थे
1: हाँ थोड़ा सा शर्मार हो गया बट हाँ बदमाशी करते थे
0: बगीचों से आम चुराए
1: बहुत चुराए हमने आम चुराए और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है
0: ओहो
1: प्रिंसिपल को भी थोड़ा परेशान किया है
0: थोड़ा
1: हाँ इतना थोड़ा कि उन्होंने
0: घर शिकायत भेज दी
1: घर शिकायत नहीं घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था
0: अरे बाप रे फिर
1: पिताजी आए उन्होंने अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता दूं
0: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा कुछ तो आपने वाला किया होगा
1: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे
0: जी जी जी
1: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे तो टीचर ने
0: अच्छा
1: इसको कर्मा बोलते
0: वापस आ गया
1: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके वो हाँ तो बदमाशी की है सर हाँ कभी कभी स्कूल से जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
0: जी
1: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था
0: अच्छा
1: और जिस स्कूल में हम थे मैं बॉयज स्कूल में था सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे
0: जी
1: बहुत स्ट्रिक्ट थे
0: उस जमाना भी सख्ती का था
1: बहुत ज्यादा था और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा सो उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे नहीं
0: कहीं और पहुंच गए
1: तो ऐसी बदमाशियां रही फिर खेलने चले गए
0: जी
1: गेम खेलने चले गए क्रिकेट खेलने चले गए तो ये मस्तियां की हैं और पिताजी को पता नहीं होता था और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
0: तो क्या हाल होगा
1: बाप रे दुनिया अलग और मैं अलग
0: कितना सख्त अनुशासन आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा अनुशासन भी उतना ही
1: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था
0: जी
1: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने मेरे भाई ने हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ
0: जी ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा
1: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
0: जी
1: अनुशासन में रहने का जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो वो भले ही

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीजें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली बहुत सारी चीजें मैंने तब रियलाइज की कि कुछ चीजें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत जरूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4-4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ बड़ा हमें लाड प्यार मिला है। मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है।
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी जब वो शांत हुए उनकी एज थी 104 साल।
1: ओहो हो, गजब।
0: ही वॉज अ मिलिट्री गाय।
1: जी जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी और इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली
0: वो पार्ट थे उसके।
1: ओके।
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे उनको स्निच हुआ था, गोलियां लगी थी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, हिज सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने
1: फौज में होते हुए।
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: शहनाई और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी।
1: त्रिपुरा बांसुरी
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में।
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास।
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से।
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है
1: जी
0: वो वैसे ही बजाते हैं।
1: जी जी।
0: पंचम होल
1: यूज नहीं करते।
0: तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी है।
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: अद्भुत बांसुरी, उनका आशीर्वाद है
1: जी।
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम तीनों को उठा देते थे, वो हम तीनों का 4 बजे उठ के मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि रात भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है। और उस मुहूर्त में जो राग है वो रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है, वो तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था।
1: जी जी।
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुनने से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह।
0: तो सरे गामा पदनी जानी लबा मागा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के, जा

0: मोहन जागो,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: मोहन प्यारे जागो। तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है। क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बचपन
0: वो
1: की
0: चार
1: नींद,
0: साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
1: बिल्कुल
0: उस वक्त जगा दिया जाता था। दिल्ली, आई बॉर्न एंड ब्रॉट इन दिल्ली,
1: जी
0: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
1: खतरनाक जी।
0: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, वट एवर। ये मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड की बात बता रहा
1: जी
0: हूँ।
1: जी
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नया नाश्ता किया, 7:30 8 बजे हम लोग रियाज पर बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी, तो ये बांसुरी बजाते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
1: अरे गजब।

0: होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। सो हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4:30-5 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10-10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11-12-13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल वैसा था।
1: वाह वाह।
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके दिन भर, अब सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा।
1: और बच्चे तो सो रहे हैं,
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से आ रही, नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक।
1: ओहो हो, तो सारी रात जागना है।
0: पूरी सारी रात जाग गए
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है।
0: सुबह का शेड्यूल तय है, पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज शासन
0: से, रियाज करते हुए अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या बात है।
0: मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रेटिट्यूड महसूस करूं यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया
1: जी,
0: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी जिंदगी बनी
1: जी,
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी और फिर संगीत सिखाया और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी
1: जी,
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल।
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल,
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है।
1: बिल्कुल।
0: ये और मैं एक ही हैं। सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूं और एक सास की सेवा कर रहा हूं, कृष्ण भगवान की सास की सेवा कर रहा हूं, जिन्होंने इस सास से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है। पारस जी, हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी
0: जी,
1: उस पर कोई धुन बजाएं और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद का।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूँ
1: जी,
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का
1: जी,
0: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी
1: जी जी,
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे
1: जी जी जी,
0: इसको ऐसे बजाते हैं।
1: समझ गया।
0: देखिए, तो एक होती है सीधी बांसुरी,
1: हाँ,
0: आपने देखी होगी ऐसे शहनाई की तरह बजाते हैं
1: जी जी जी।
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी
1: जी,
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं। तो मैं कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी
1: हमेशा
0: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी।
1: हाँ,
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं
1: जी।
0: फिर ये हुए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे। इसका ये पंचम का होल है
1: जी,
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरी।

0: पे होता है
1: उस तरीके,
0: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए इसमें जो कृष्णा बांसुरी है इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपनी नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीजें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना, ग्रीडीनेस
1: जी,

0: दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का
1: हाँ, होता है। बिल्कुल है,
0: ठीक है,
1: आखिर में
0: ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बात हो रही है,
0: हमने तो बचपन से देखा है
1: जी,
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है, ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है, तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए,
1: आप माध्यम है,
0: आप अपने आप को मत समझिए कि आप भगवान है
1: जी,
0: आप भगवान नहीं है, आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले, जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही,
0: तो हमने तो बचपन से देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, जो भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी में बजा नहीं पाता,
1: कोई बात नहीं,
0: तो आप इसका साउंड क्रिएट नहीं कर पाता
1: जी, तो आप अपनी कृष्णा बांसुरी बजाइए।
0: मैं लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर मेरे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है ये,
1: वाह
0: हमेशा,
1: क्या प्यारी बात,
0: ये मेरे फ्लूट किट में रहता है
1: जी जी जी।
0: अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, ये तीव्र माँ का ये है
1: जी,
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल है,
1: था
0: है ना
1: जी,
0: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का
1: जी जी,
0: पिताजी का भी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे, वो टेक्निकली वो उस चीज को समझ ही नहीं पाए। अब हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका, अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं बेटे भी हैं शिष्य भी हैं, अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं, समझ में नहीं आता है।
1: बिल्कुल सही,
0: वो देखना पड़ता है
1: जी।
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में,
1: हाँ हाँ।
0: दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूँ,
1: ठीक है, और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते हैं,
0: मैं फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
1: जी।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए।
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटि कोटि प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: एसडी बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी।
1: जी जी जी।
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने।
1: अच्छा,
0: बहुत ही छोटी सी। अब जैसे ये चल रहा है।

0: आर जी, आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी। एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ। जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना,
0: जी,
1: कोई सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी।
0: जी,
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है,
0: शिशु होता है, जब
1: शिशु होता है वो, तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है,
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बोलता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, मेरे दादाजी के साथ में गया था, और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।
1: हाँ, तो वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने। उस वक्त क्या था, वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं। तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया,
0: जी जी जी,
1: उस वक्त वैसा नहीं था। तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
0: वो उम्र भी बहुत छोटी थी।
1: हाँ, काफी छोटी थी। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने, दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ,
0: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक? गजब,
1: वो ये आशीर्वाद है।
0: जी जी जी।
1: अब वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं, क्या करते हैं, सवाल
0: ले जाई
1: जी।
0: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा,

0: खेलकूद से, सिनेमा से?
1: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
0: जी
1: उस वक्त। म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
0: जी
1: काम करने लग गया था, तो फिल्म से नाता, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से मतलब सुनने में और करने। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं। मेरी माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे, मेरी माताजी और दादी जी वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक पारे, गुजिया, घर की मेन मिठाई। तो पहले बाहर से नहीं आता था मैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हालांकि हमारे घर में तो तब त्योहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है।
0: और वो ठेठ बनारसी,
1: ठेठ बनारसी, तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो।
0: गजब।
1: हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता, तो रेडियो में सब पुराने गाने लता जी के, खयाम साहब के, रफी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं। तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बलमा
0: जी जी,
1: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता।
0: हाँ हाँ, चोरी चोरी फिल्म का।
1: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना, सबका सुना हुआ है।
0: गजब।
1: तो वो जहन में, वही मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूं, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करता हूं, वहां बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है, एक वो
0: होली आई रे कढ़ाई।
1: हाँ, अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था
0: जी,
1: तो वैसा था। तो फिर ऐ दिले नादान,
0: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान।
1: हाँ, रजिया सुल्तान, वो कितना कमाल गाना है वो।
0: बिल्कुल।
1: हो हो हो हो, तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर, फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम
0: जी,
1: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन,
0: अरे बाबा,
1: और गुजुटी से नहीं, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी। फिर ज्यादातर ये रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स, प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक।
0: अच्छा,
1: बहुत शौक,
0: क्या बात है।
1: एंड आई वाज द बेस्ट प्लेयर।
0: अरे वाह,
1: द टीम। यस।
0: तो आप बॉलर थे या आप?
1: मैं बॉलर ज्यादा रहता था, ऑलराउंडर ही था ज्यादातर, बट ज्यादा बॉलर वाला काम था मेरा।
0: क्या बात है।
1: था।
0: तो फास्ट बॉलर थे?
1: फास्ट बॉलर, लाइक शोएब अख्तर।
0: वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है। तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है?
1: अब तो सर सिर्फ बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ
0: जी। लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
1: विरोध ये था कि जब खेल के थे ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में।
0: खेल रहे हैं तो फिर बस,
1: फिर खेल रहे हैं तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं,
0: डरते डरते।
1: हाँ, कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब तो।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: कोई मैसेज ही नहीं घर पे कि बच्चा जगह है कहाँ।
0: हाँ,
1: तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले ही गए
0: उनके तहत खेल।
1: हाँ, वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी। और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
0: जैसे मुकाबले,
1: फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है, उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे
0: हैं,
1: तो वैसा रहता था, दिन भर चला जाता था उस जुनून में। फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर वाले
0: भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती होगी,
1: महंगी पड़ती थी।
0: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
1: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही
0: इशारा किया था
1: कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे।
0: अच्छा। ये कोर्स से बाहर का सवाल है,
1: पर आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस
0: ले आए।
1: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हैं, पता नहीं क्यों।
0: नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते हैं।
1: स्टूडियो चलते हैं ना,
0: स्टूडियो चलते
1: मजा आता है।

0: आकाशवाणी के गलियारों से जुड़ी यादें बताई। पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे, तो
1: वहां पे
0: उनके साथ जाते होंगे आप स्टूडियो?
1: जी, हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक,
0: हाँ,
1: जब हम उनके साथ जाते थे तो वो पेंशन के लिए जाते थे
0: जी,
1: दादाजी अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त, तो उनके साथ जाने का एक अलग मजा था, एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज्यादातर। दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ। अभी जो मैंने तानपुरा चलाया
0: जी जी,
1: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी। तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर में, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी ग्राहक का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचनाओं की जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। अब सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है
0: कंपोजिशन
1: है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
0: बिल्कुल।
1: तो उस वक्त क्या होता था सर कि हम जब जाते थे पिताजी के साथ तो वहां जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मजा तो आता था वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीजें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीजें समझ आती थी। बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी
0: जी।
1: और ये सब तो दुनियादारी की चीजें, ये आप घर भी नहीं सीख सकते।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं,
1: ये आपको घर से चौकट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसियर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सबका ख्याल रखना। और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अभी हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर में, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो
0: जी,
1: तो पूरे एक हमारा चक्कर
0: लगता है।
1: तो वहां पे फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की जरूरत नहीं, वो जो वहां पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं इतने प्यारे हैं तो इनको एक तरीका बता दो। और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीजें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए। तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का।
0: क्या
1: तो वो एक बड़ा शाम को फिर एक अलग माहौल होता था कि जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहां पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्जाम ही नहीं होता था वो, कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है,
0: हाँ
1: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए।
0: बिल्कुल।
1: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज्यादा फीलिंग से ज्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए,
0: इतने सारे लोग
1: इतने सारे लोगों के बीच में, तो उनकी वो एनर्जी और वो

0: प्रचंड भी और पर्सनैलिटी के वो विभूति सब बैठे हैं एक रूम में, तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं, तो घबराहट रहती थी। तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज्यादा।
1: गजब, यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत
0: था। वही था, वही था।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सिनेमाइट के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार।

आपका इंतजार, आपका प्यार और ये है आप सभी का ख्वाब आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, पेशे खिदमत है कार्यक्रम ई फरमाइश और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी मेजबान सारिका शर्मा। कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी मुस्कुराहटों का राज क्या है, इजाजत हो तो आपके नाम कह दूं। जी हाँ, ये जो कार्यक्रम है ई फरमाइश, ये तो आप ही के लिए है, क्योंकि ये आपकी फरमाइशी मैसेजेस के ऊपर आधारित है। आप हमें अपनी फरमाइश लिखकर भेजते हैं और हम इस कार्यक्रम का आपकी तरह ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि हमें तो आपका प्यार चाहिए और आप सभी श्रोता ख्वाहिशमंद हैं कि आपकी पसंद के गीत आप तक पहुंचाए जाएं, और इसीलिए मंगलवार की शाम आप 5 बजे इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। फिर चाहे मौसम कैसा हो, सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, तूफान हो, और फिर या फिर ये मौसम हो जिसे कहते हैं नौ तपा। श्रोताओं, आप जानते हैं कि 9 दिन तक बेहद भीषण गर्मी पड़ती है तो उसे 9 तपा कहते हैं। लेकिन देखिए ना, ये भी कहा जाता है कि 9 दिनों की गर्मी के बाद अगर ये गर्मी बहुत अच्छे से पड़ती है तो इस गर्मी के बाद मौसम बहुत खुशगवार होकर वापस लौटता है, यानी कि मानसून बहुत अच्छा बरसता है और इस जलती हुई तपती हुई धरती की प्यास भी बुझ जाती है। तो फिर उसी आस में, हम उम्मीद में इस 9 दिन की गर्मी को यूं ही पलक झपकते ही बिता लेंगे, चाहे फिर एसी काम करे या ना करे, बिजली घर में आए या ना आए, और पानी भी ठंडा हमें मिले या ना मिले। वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद इंसान को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और 2 दिन तो बीत ही चुके हैं 9 तपा के, ये 2 दिन भी बीत जाएंगे दोस्तों। तो फिर शुरुआत करते हैं।

तखतपुर छत्तीसगढ़ से हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। पाकुड़ झारखंड से हमारे श्रोता हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। मेरठ कैंट से हमारे श्रोता हैं दिग्दर्शन, कविता, राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शना भाई। गांव जेवरा हिसार से हैं वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र शमशेर, मनोज भ्याण और इनका परिवार। और ये हमारे श्रोता हैं मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, शायना, विशाल, सुप्रिया, अनिल, अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी। और ये अगली फरमाइश हमें मिली है छत्रपति संभाजी नगर सुरेवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद और विमर्श। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाबख्श, बेगम राबिया शेख, शेख राही मुन्ना, दानिश हासिफ शेख। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। गांव कलाना भादरा हनुमानगढ़ से हैं विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और प्रधव। और आपकी पसंद पर सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों कहते हैं कि जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई अपना नहीं वो अपनों को तरसते हैं। कल ना हम होंगे ना गिला होगा किसी से, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। वैसे ये तो जिंदगी की एक पॉजिटिव सच्चाई है, या कहना चाहिए कि हमारी सबकी सकारात्मक सोच है। और अब लेते हैं ई फरमाइश का अगला नाम। भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे श्रोता हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार। गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार। मनाली हिमाचल से हैं हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई। चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा। और ये हमारे श्रोता हैं अनारकली बाजार जगराओं से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा गव्या, सुचा सिंह पाठक और इनका परिवार। और ये हमें भेजा है मुजफ्फरपुर बिहार से इस फरमाइश आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। मारहरा दरवाजा एटा से हैं नबी हसन अब्बासी, शाहनाज अब्बासी, नवेद हसन, रशीद वारसी, सुहेल हसन, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी। सिकंदरा राव से हैं मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन और इनका पूरा परिवार। सदर बाजार कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। जमानिया गाजीपुर यूपी से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से हैं विपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। गांव लसूड़िया पाता, तहसील लरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से हैं गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। और ये हमारे श्रोता हैं मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान, अनुराज बेनारा। और ये फरमाइश हमें भेजा है

बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना चैतन्य, मेघा मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना, आप सब सुनना चाहते हैं ये प्यारा सा नगमा और हम भी आप ही के साथ सुनेंगे।

बेसार की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई फरमाइश आकाशवाणी के हिसार केंद्र से एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर और आज आपके साथ मैं हूं आप सबकी मेजबान सारिका शर्मा। दोस्तों कुछ लोग ये बात कहते हैं कि तारीफ और आलोचना हमें इन दोनों बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि एक फूल को बढ़ने के लिए जैसे धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है उसी तरह एक इंसान को भी जिंदगी में मजबूत बनने के लिए गम और दुख और खुशी इन दोनों की जरूरत पड़ती है क्योंकि गम और मुसीबतें हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं और फिर उसके बाद सुख की ठंडी बयार हमें शांति देती है और फिर यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। और अब सबसे बड़ा सच ये है कि आप इंतजार कर रहे हैं और अपने नामों की लीजिए। ये हमारे श्रोता हैं गंज टुंडवारा से मोहम्मद कली मंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान और इनका पूरा परिवार। और अगले श्रोता हैं हमारे चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी, आसाराम वर्मा, लीलाधर शर्मा और इनका परिवार। और ये हमें भेजा है गांव शिरटे जिला सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता, ऋषिकेश, वसुंधरा और इनका पूरा परिवार। हमारे अगले श्रोता हैं परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश और प्रगेश संघई, प्रीतेश संघई। और ये हमें भेजा है ई फरमाइश हमारे भेजने वाले श्रोता हैं धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, अयान बाबू। और हमारे अगले श्रोता हैं गांव चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, अंशिका बोथ, तमन्ना कांगड़ा। और ये फरमाइश हमें मिली है खेल बाजार पानीपत से भावना मल्होत्रा, नरेश लक्ष्य, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का। और हमारे अगले श्रोता हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल और तन्वी। ये फरमाइश हमें मिली है झज्जर हरियाणा से भेजने वाले हैं बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। फाजिल का पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा और इनका परिवार। और ये हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभैये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभैये। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत। इन्होंने सुनना चाहा है ईद के मौके पर ये मुबारक नगमा।

दोस्तों, आपने देखा होगा आपके आसपास हर तरह के लोग होते हैं। लोग बहुत प्यारे भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े ही प्यार से और अदब के साथ आपसे मिलते हैं। ऐसे लोग रिश्ते निभाना जानते हैं क्योंकि उनमें प्रेम, विश्वास, आत्मविश्वास और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना बहुत गहरी होती है। ऐसे लोग छोटी छोटी सी बातों पर कभी बुरा नहीं मानते, छोटी छोटी बातों का कभी बतंगड़ नहीं बनाते और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातों पर भी जल्दी से रिएक्ट कभी नहीं करते, लेकिन फिर एकाएक वो रिश्ते निभाना बंद कर देते हैं। अगर आपके आसपास आप ऐसा देखें तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उस शख्स के आत्मसम्मान को गहरी ठेस लगी है, इसीलिए वो अब अपने अंदाज को बदल चुका है। इसीलिए अब वो इतना प्यारा और भरोसेमंद है तो, लेकिन आपके प्रति कम हो गया है, यानी कि आपसे दूरी बना रहा है। तो फिर जिंदगी में ऐसे लोगों को खोना नहीं चाहिए, अपने अंदर बदलाव जरूर करना चाहिए और अपने आसपास प्यारे लोग हमेशा रखने चाहिए। जीवन श्रेष्ठ है दोस्तों, अवसर भी श्रेष्ठ होते हैं और करने के लिए समय उतना ही है जितना जिंदगी ने दिया है। तो श्रेष्ठ पाने के लिए आपको भी श्रेष्ठ बनना होगा। जैसे हमारे ये श्रोता है, बाजार रोड मुंगी सापुर से है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीम पलक लुबना और यश मंसूरी। और ये अगली फरमाइश हमें भेजी है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी। और ये हमारे अगले श्रोता हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, और ये है सरगांव पीपरलोड छत्तीसगढ़ से मिली है हमें ये फरमाइश। गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र बिहार, सुरेंद्र, शमशेर, मनोज और इनका परिवार। और ये हमें फरमाइश भेजी है हमारे भेजने वाले श्रोता हैं रेलवे कॉलोनी भटिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक। और ये फरमाइश हमें मिली है मुक्तसर से बब्बू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत और

मीशो की। गांव व डाकघर निम्नाबाई जिला जींद हरियाणा से हमारे श्रोता हैं जसबीर सिंह इलमावादी, जतिंदर कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। डबवाली हरियाणा से हैं जेके बकोलिया, सुनीता, संजय, अनिल और मीनू। शांति नगर खरखोद जिला उज्जैन से असलम खान दुलावत, शबीना, फिरदौस, फलक, अफशा और अयान दुलावत। और ये हमारे श्रोता हैं पीपरिया जिला कबीरधाम से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता। और ये अगली फरमाइश हमें मिली है चीतलवाड़ी अकोला से, भेजने वाले हैं अमोल इंगले, अर्चना, सर्वेश, अधीरा, राजवी। भुच्चो कैंचिया भटिंडा से हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, एकम दमन, अभिजोत। गौतम नगर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जौंदले, आरती। गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं मनोज नामदेव, मासूम नामदेव, ममता, रेखा और मयंक। छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजलि और सोहम। चीतलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना, सर्वेश, अधीरा और राजवी। सांगली जिले के जत शहर से हैं अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख। और ये हमारे श्रोता हैं तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख राहिमुन्ना और दानिश हासिफ शेख। आप सबकी पसंद पर पेश है ये गीत।

दोस्तों, ये सच है कि हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन किसी को अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन जरूर कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि भगवान तो सब नहीं बन सकते, लेकिन किसी को सही राय देकर आप उसके सारथी बन सकते हैं। स्वार्थी बनने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, क्योंकि वक्त सबका आता है। और अब वक्त आया है हमारे इन श्रोताओं का। ये हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और हैं जीशान खान। और ये हमें भेजी है फरमाइश, लिखने वाले हैं दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा और हैं इनके साथ रुद्र वर्मा। ये फरमाइश हमें भेजी है गांव कुम्हारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सदाम और अदीब हसन की। अगले हमारे श्रोता हैं शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, किशनगंज बिहार से हमारे श्रोता हैं रविंद्र मोहनदास और आशा देवी, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और इनके साथ हैं भूमिका अरोड़ा। और हमें अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। और हमें अगली फरमाइश हमारे भेजने वाले श्रोता हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और भाई राजकुमार बोड़ाना। मजनू कटीला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक। और ये हमारे श्रोता हैं गांव गोंदर जिला करनाल से किरण पाल बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, सोनिया, पूनम, रोशनी देवी और भगत सिंह। खमरिया छत्तीसगढ़ से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और इनके साथ हैं प्रतीक कुमार। और ये फरमाइश हमें भेजी है हमारे श्रोताओं ने दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। सावतपुर से हैं ऋषि सेन और इनका परिवार। और ये हमारे श्रोता हैं हरियाणा चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और इनका परिवार। हमारे अगले श्रोता हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनका पूरा परिवार। हमारी एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है श्रोताओं कि अपने नाम सिर्फ एक ही बार भेजिए। बार बार भेजने से हमें काफी परेशानी होती है। पोटिया कला दुर्ग से हमारे श्रोता हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। और ये हमें मिली है फरमाइश बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र, नरेंद्र चिंडालिया, ये हैं लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से। आप सबकी पसंद पर पेशी खिदमत है ये बहुत प्यारा सा नगमा।

छोटी सी जिंदगी है दोस्तों, हंसते रहा कीजिए, क्योंकि लौट कर बस यादें आती हैं, वक्त कभी लौट कर नहीं आता। और इसी गीत के साथ सारिका शर्मा को अनुमति दीजिए ई फरमाइश को संपन्न करने की। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से चंद लम्हों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, प्रतीक्षा के बस चंद पल और हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में

0: नाथ सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार के प्रसारण। लीजिए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में उनके समय के अनुसार। पहले आज के शेष आकर्षण और उनका समय।

श्रोताओ, आज शाम 6:20 पर आप सुनेंगे ईश्वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत, और 6:30 पर आप सुन सकते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

लोकमंच है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम, आप सुन सकते हैं आज रात 8 बजे और खुला आकाश आप सुनेंगे 8:30 पर। श्रोताओं, आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, जो आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होगा। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की, और अब कल के आकर्षण और उनका समय।

श्रोताओं, कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:55 पर। लोकरंग आप सुनेंगे 7:10 पर और सुप्रभात आप सुन सकते हैं 7:40 पर। नमस्ते हिसार का प्रसारण समय होगा कल प्रातः 10 बजे और इसी बीच 1:05 पर रिले होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से। ओल्ड इज गोल्ड सदाबहार नगमे आप सुनेंगे कल शाम 5 बजे। और श्रोताओं, ईश वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत आप सुन सकते हैं 6:20 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम खेती किसाना सेती आप सुनेंगे कल शाम 7 बजे। और भारे गांव का समय रहेगा 7:30। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कल रात 8 बजे। श्रोताओं, कल रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। तो ये थी जानकारी आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में उनके समय।

के अनुसार। ये आकाशवाणी हिसार है। अब गुमशुदा व्यक्ति के बारे में सूचना सुनिए। इनका नाम है सतबीर, पिता का नाम है शंकर और ये तलवंडी बादशाहपुर जिला हिसार के रहने वाले हैं। ये 2 मई 2026 से लापता हैं और इनकी उम्र है 55 साल। कद है 5 फुट 4 इंच। दुबला पतला शरीर है, सांवला रंग है और ये दिमागी तौर पर बीमार है। अगर इनके बारे में कोई सूचना आपको मिलती है तो थाना आजाद नगर हिसार को सूचित कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई और मोबाइल नंबर होगा 9050204891। ये गुमशुदा व्यक्ति के बारे में सूचना सुनी आपने। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी हिसार है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से।

0: शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी।
1: हरियाणा के मेधावी विद्यार्थियों को इसरो की दुनिया से रूबरू करवाया जाएगा। विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकवादी रोधी दस्ते का गठन किया जाएगा। और लेफ्टिनेंट जनरल अजीत सिंह साही ने चंडीमंदर सैन्य स्टेशन में पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार ग्रहण किया। अब समाचार विस्तार से। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि यह पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवनी नहीं है, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई दी।
2: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना, और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
1: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत 12 वर्ष भारत का स्वर्णिम काल सिद्ध हुए हैं। इस दौरान देश में विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है और जनता का शासन में विश्वास बढ़ा है।
3: ये जो हिंदुस्तान के 12 साल नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में पूरे हुए हैं, ये भारत का स्वर्णिम युग है। इसमें हर क्षेत्र में भारत ने तरक्की की, जन विश्वास बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, डिजिटल क्रांति आई है, हमारी आर्थिक व्यवस्था को 11वें नंबर से उठा के 5वें नंबर पर कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का जो इमेज था, गब्बू का इमेज था, आतंकवादी आते थे, गोलियां चलाते थे, मारते थे, और हमारे नेता केवल श्रद्धांजलि दे के अपने अपने ड्राइंग रूमों में चले जाते थे, उसको बदला है। अब अगर उन्होंने हरकत की है तो पाकिस्तान में घुस के मारा है, सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं।
1: हरियाणा की शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा आज पंचकुला स्थित शिक्षा सदन में शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में विशेष प्रावधान करते हुए मेधावी विद्यार्थियों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की दुनिया से रूबरू कराने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु वर्ष 2026-27 के लिए ये विशेष योजना तैयार की गई है। इस पहल का उद्देश्य बढ़ाना है। योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य मेधावी छात्रों को इसरो के विभिन्न केंद्रों का भ्रमण कराया जाएगा, जहां वे अंतरिक्ष विज्ञान, सैटेलाइट तकनीक और रॉकेट प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार नए प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी बच्चों को सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है।
3: तो हमारे बच्चे जिन्होंने 10वीं में और 12वीं में टॉप किया, हमने आज ऐसे बच्चों को सम्मानित किया शिक्षा विभाग ने, जो कुल मिला के 22 बच्चे बने प्लस टू से भी और 10वीं से, उनको सम्मानित किया। आज
1: उन्होंने 2026 के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में बेटियों द्वारा शानदार प्रदर्शन करने पर खुशी व्यक्त करते हुए सभी छात्राओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंगल ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकवादी रोधी दस्ते का गठन किया जाएगा। श्री सिंगल आज पंचकुला पुलिस मुख्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंगल ने इस बारे विस्तृत जानकारी देते हुए कहा,
4: एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया जा रहा है हरियाणा में, शायद 1 जून से ही लागू हो जाए, जिसमें हम जितने भी टेरर रिलेटेड केस है उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड वेल इक्विप्ड फोर्स बनाएंगे जो कि एमएचए की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करेगी, और जिसमें एक थाना हम पंचकुला और एक थाना हम गुड़गांव बनाएंगे और सारे टेरर रिलेटेड केसेज हम उसमें शिफ्ट करेंगे।
1: पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिस विभाग को 750 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। इससे अगले 2 वर्षों में पुलिस संरचना को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2024 के आंकड़ों पर उठ रहे सवालों को लेकर श्री सिंघल ने कहा कि हरियाणा में हर प्रकार के अपराध की FIR दर्ज की जाती है, जिससे आंकड़े अधिक दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में बिजली चोरी और लापता मामलों में FIR दर्ज नहीं होती, जबकि हरियाणा में ऐसे मामलों को भी रिकॉर्ड में लाया जाता है। उन्होंने बताया कि दादरी, यमुनानगर और झज्जर के चर्चित हत्याकांड मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं राव नरेंद्र सिंह के घर में सेंधमारी मामले में भी 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर हरियाणा को अपराध में 4थे या 5वें स्थान पर दिखाने की कोशिश की। पुलिस महानिदेशक के अनुसार यदि बिजली चोरी और लापता मामलों को अलग कर दिया जाए तो हरियाणा अपराध के मामले में 9वें या 10वें स्थान पर आता है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 से 5 साल में हरियाणा में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही ने आज चंडीमंदर सैन्य स्टेशन में पश्चिमी कमान मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा का स्थान लिया है। इन्होंने सेना मुख्यालय में महानिदेशक रणनीतिक योजनाकार का पदभार संभाला है। पंजाब पब्लिक स्कूल अनाभा और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल शाही को दिसंबर 1988 में राजपूत रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त हुआ था। उन्हें उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों सहित सियाचिन ग्लेशियर में व्यापक अनुभव प्राप्त है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज पंचकुला में PGIMER व शिव कांवड़ संघ के संयुक्त तत्वाधान से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले भर से आए नौजवानों और पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। समाचार लिखे जाने तक लगभग 310 से अधिक रक्तदाता रक्तदान कर चुके थे। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव अजय कुमार गंगस ने बताया कि रक्तदान शिविर न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल के मार्गदर्शन में लगाया गया।
5: आज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक सिब्बल साहब और मेंबर सेक्रेटरी जगदीप लोहान साहब की अध्यक्षता में हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के प्रांगण में एक कैंप लगा है। हमें PGI चंडीगढ़ की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि नॉर्मली मई और जून के महीने में बुलेट की

0: काफी कमी हो जाती है, जिससे पेशेंट्स का जो मेडिकेशन है वो अफेक्ट होती है। उस रिक्वेस्ट के बाद आज ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है और मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। अभी तक 250 से ज्यादा जो लोग हैं वो ब्लड डोनेट कर चुके हैं। इसी एंथुजियाज्म के साथ जल्द ही हम दूसरा ब्लड कैंप भी लगाएंगे और इस कैंप के साथ ही हमने जो लीगल एड है और जो अदर सर्विसेज है उसके बारे में भी हमने लोगों को जागरूक किया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष का काल भारत का स्वर्णिम काल सिद्ध हुआ है। हरियाणा के मेधावी विद्यार्थियों को इसरो की दुनिया से रूबरू करवाया जाएगा। विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंगल ने कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकवादी रोधी दस्ते का गठन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं ईश वंदना का हमारा कार्यक्रम भक्ति संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ईशवंदना का हमारा कार्यक्रम भक्ति संगीत एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम एपिसोड नंबर 1292।

0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
1: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
0: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा

0: प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
1: योगेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
0: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अवान अब्बासी।
0: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
1: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: अजीत जी, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
1: जी, मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
1: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
0: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
1: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
0: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
0: जी,
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
0: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
0: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
1: जी,
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
0: जी
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
1: जी
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800044055 पर भेज सकते हैं।

0: साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
1: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत

0: And this was Kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
4: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा

0: isso aqui.
1: Vídeo Anarchy!
2: Jay!
1: Vídeo Anarchy!
2: Jay!
1: Jay Jera por Jay Bharat!
2: Jay Jera por Jay Bharat!
3: राजा जोरावर सिंह हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जीरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
4: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
4: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
5: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
6: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
5: जी।
6: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
5: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
6: बिल्कुल,
5: आपके सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
6: जी मंत्री जी।
5: जी महाराज।
3: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
1: होशियार, खबरदार, रियासत जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
7: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह
3: आइए हमारे दोस्त। तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसी तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
6: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
3: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
6: देखिए निजाम साहब।
3: जी फरमाइए।
6: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
3: जी।
6: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
3: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
6: जी।
3: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
8: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
4: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का

0: का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
1: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
2: बिल्कुल।
1: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब न हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
2: जरूर आप फिक्र न करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
1: लेकिन जरा होशियारी से।
2: जो हुकुम सरकार।

0: तरफ से गिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: You are under arrest।
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ। आओ सामने।
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
1: छोड़ो मुझे। हाथ मत लगाओ मुझे। मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सालार जंग, मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
1: हुजूर। अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: चलो इसको,
1: चलो मुझे, छोड़ो मुझे।
3: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े।
4: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
5: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
5: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
5: Why?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
5: टर्म नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है।

0: इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
1: Actually, you are a fool.
2: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
3: काला पानी की सजा?
2: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
3: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
2: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
3: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम एपिसोड नंबर 1292 एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: सात्रीबान राम राम अनीताबान आपने भी राम राम कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बान भाई ने राम राम
2: नू बता दे सुनीताबान सात्रीबान आपका स्वास्थ्य बढ़िया है ना टनाटन
1: बिल्कुल टनाटन
2: एकदम
1: एकदम
2: तो बात यह है देखने ना मानिए क्यों पूछू लगे अनिता एकदम तो बात यह है कि आपने जो अपना विषय है अपना विषय है आपका जो अपनी मट्टी है खेत की फसल जिसमें आप बो उसका स्वास्थ्य नापन का एक कार्ड है
1: अपना भी तो कार्ड है हाँ। आपा भी तो नपुआ वहाँ टाइम टाइम पर
2: जब तो
1: आपा ने भी तो नपुआना पड़ा है
2: नपुआना पड़ा है
1: कदे विटामिन कमी की बी की कमी होगी कदे बीट वालों की कमी होगी कदे विटामिन सी की कमी होगी
2: हाँ।
1: टाइम टाइम के अनुसार कैल्शियम की भी कमी हो जाए है तो जिस तरह आपने भी नाप तो करनी पड़े ना पर शरीर के साथ जांच करवानी पड़े इस तरह आपने मिट्टी के स्वास्थ्य की भी जांच करानी पड़े और आज का अपना विषय भी है मिट्टी के जांच के विभिन्न आयाम और मृदा स्वास्थ्य कार्ड।
2: तो इसमें जो अपने किसान भाई हैं भाई उसमें जो जागरूक किसान भाई है वो क्या कर रहा है अपनी मिट्टी पानी की समय समय पर जांच करवाता रहे नू देखता रहा है कि मेरा धरती का स्वास्थ्य किसा है और वो कार्ड बन गया है उस कार्ड में क्या है 12 से लेकर 14 जो पोषक तत्व तो है उनका मापदंड उसमें बताया जा है तरीका बताया जा है भी क्यों आप उसमें बेरा पार्च को हो जानकारी दी जा है और यो कार्ड बता है कि मिट्टी में किन किन पोषक तत्व की कमी है और आपने जब अच्छी उपज लेनी है तो कितनी मात्रा में आपने खाद पानी देना पड़ेगा।
1: बिल्कुल बात आपने पहले नहीं कहा कि मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है
2: हाँ।
1: क्योंकि मिट्टी की जांच करने अपना पता चल लगा कि खेत की मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों का स्तर कितना है पीएच वैल्यू कितनी है फसल सुधार के लिए किन किन चीजों की अपना जरूरत है इससे कि कौन से रासायनिक खाद आप कम डालना कौन से ज्यादा डालना और इससे अपने मिट्टी की जांच करने का अपना काफी खर्च बचे है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़े है।
2: आपका कहने का मतलब जो अपने किसान भाई हैं उनकी गोज पे मतलब बोझ इतना नहीं पड़ता तो आपने बताया कि आपने पहले जांच करनी पड़ेगी कि अपनी मिट्टी में कौन सी की कमी है तो जिसमें रासायनिक है इसमें जिस तरह मिट्टी के पोषक तत्व है जैसे नाइट्रोजन है फॉस्फोरस है या पोटास है उसमें जो पोषक तत्व जिन

0: ਕੱਪ ਪਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੌਰਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਮਾਚਾਰ ਬਤਾਈ ਜਾ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਆਯਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ ਉਸਕੀ ਜਲ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਨ ਕਰ ਸਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਨਾ ਉਸਨੇ ਬਚਾ ਸਕਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰ
1: ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੈ ਚਿਕਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਆਪਟ ਹੈ ਰੰਗ ਸੰਰਚਨਾ ਜਲ ਧਾਰਨ ਕਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਥੋਕ ਗੰਧਤਾ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣੋਂ ਕਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੈ मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास इनका पता चला है द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर इनका पता चला है सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक आयरन कॉपर मैग्नीज बोरान मोलिडेम कुछ राज्यों में इनका भी पता चला है और जो दूसरे महत्वपूर्ण पैरामीटर जिस तरह जैविक गतिविधि
0: हाँ
1: भारी धातुओं की उपस्थिति भारी धरती में पानी के साथ जो जा प्रदूषित क्षेत्र का नाइट्रेट फ्लोराइड इस तरह का चीजा का पता चला है अपने धरती की जांच कराना है
0: आप बात करें जिस तरह भौतिक आयाम है इसमें मिट्टी की बनावट का बेरा लग जाए या फिर जैविक आयाम है मिट्टी में जो मौजूद जो जैविक कार्बन है या सूक्ष्म जीव है उनकी गतिविधि उसमें मापी जा है या पर्यावरणीय पर्यावरण जो अपना है उसका स्वास्थ्य देखा जाता है जो अपनी माटी है उसका पीएच मान कितना अम्ल है या क्षारीय है या विद्युत चालकता है वह कितनी है वो पूरी तरह जांच पड़ताल करके जय जांच करे तो भूमि है जो अपनी कई बार हो जाए देखा कई किले अपने बंजर रह जाए हैं उस न होता पा उसने बचा सका है
1: तो स्वास्थ्य कार्ड में जब आप करवाओ मिट्टी की जांच स्वास्थ्य कार्ड आपने मिले उसमें क्या क्या बात देखने मिले है मिट्टी की वर्तमान स्थिति
0: अच्छा
1: और बताएगा जो पैरामीटर उनकी जो फसल वार सिफारिश मैंने फसल बदल बदल के उनकी सिफारिश की जो है किस फसल के लिए कितनी खाद जैविक खाद सूक्ष्म पोषक तत्व डालने हैं इसका बेरा पट है पीएच सुधार के उपाय जो चुनना जिप्सम की मात्रा कार्बन खाद की सिफारिश है कंपोस्ट वर्मी को कंपोस्ट हरी खाद डालनी है इस बात की सिफारिश भी करी जा रही है रंगीन ग्राफिकल रिपोर्ट जिनका हरा अच्छा पीला और मध्यम लाल कम आसानी से समझ जाने वाले पैरामीटर उसमें समझाए जा रहे हैं
0: ठीक और या मिट्टी की जब जांच हो है नो बताया जाए कि कद करनी चाहिए कि जब अपनी फसल की कटाई हो जाए और अपनी जो खड़ी फसल वैसे पूरी पक्के तैयार हो जाए प्रत्येक तीन साल के बाद मौसम शुरू होने तक पहले एक बार जरूर करा ले या जो अपनी धरती है उसमें नमी की मात्रा कम तक कम हो और संघन खेती के कारण खेत की मिट्टी में उत्पन्न विकार है उनकी अपने जानकारी मिल जाए मिट्टी में जो पोषक तत्व तो की कमी है या ज्यादा है उनका अपने बेरा लग जाए या जो बोई जाने वाली फसल है उनके पोषक तत्व तो की जो आवश्यकता अनुमान अपने पहले ही बेरा लग जाए कि अपने कौन से गिरनी है संतुलित खाद है उसका अपना प्रबंधन इसमें कर सका और एक एकड़ में लगभग 8-10 थरना पे वी आकार के 6 इंच के गहरे गहरे गड्ढे बना लिया और एक खेत के सारे जगह तक जो अपन माटी इकट्ठी करी है वह न्यारी न्यारी लेकर आधा आधा किलो ले और अपना भाई उसके नमूने लेकर अपने उसके जांच जरूर करवा लें
1: और जांच कड़ा करवाएंगे नजदीकी विज्ञान केंद्र केवीके पर जाके जिला कार्यालय पर जाके सोयल टेस्टिंग लैब जो है उनमें जाके आप सैंपल दे सके है ऑनलाइन जो सोयल हेल्थ है DAC.gov इन पर जाके भी आप पंजीकरण करा सके हैं HSC 2.0 नया संस्करण आया है अब डिजिटल कार्ड मोबाइल ऐप के जरिए भी आप उपलब्ध करा सके हैं सैंपल लेने का तरीका तो आपने बता ही दिया और सैंपल जब ले आप साफ सुखे प्लास्टिक के कट्टा या बोरे में काग्रा पोलोथीन में अलग से लोए उसको गिल्ला न और नमी न इस प्रकार ले और फसल और पिछले खाद उर्वरक जो आपने डाली थी उसका विवरण भी दे दे ताकि उसमें आसानी और उसका विवरण जो हमें हेल्थ कार्ड का और लाभ अपने इससे बहुत ज्यादा मिलेगा जब आप ये चीज करवा के अपनी फसल नमवाएंगे फसल की जो बढ़ोतरी है 10-20% तक अपनी बढ़ जाए है खर्च बचत 10-20% 30% तक खाद की मात्रा अपनी बच जाए है जिससे अपना खर्च बचत भी हो जाए पैसे की बचत होगी मिट्टी का सुधार भी हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण भी आप इस प्रकार कर सके हैं
0: और आप बताने लग रहे थे जब आप मिट्टी की जांच कराएं तो सावधानी जो करे भाई उसमें मिट्टी जो नमूने ले उसमें कंकड़ वगैरह ना हो घना घास ना उसमें हो और जो सूखे हुए जो अपना नमूने करे हैं आपको थे कि साफ सुथरा कपड़े में भरके और अपना जो नाम उस पर लिख दे अपना पता से लिखे है अपना मोबाइल नंबर और आधार संख्या और किले का नंबर भी उस पर जरूर डाल दे ताकि जब आपकी उसकी जांच हो तो अपने सही पता चल जाए कि आपके कौन से किले में या कमी है कौन सा में या कमी नहीं है और एक बात और कह जो सावित्री बहन के आपने को गया तो गड़बड़ कर

0: है स्वास्थ्य, अपना मट्ट पानी की तो कर ली। इब अपने किसान बाण भाई हैं, उनका भी स्वास्थ्य का ध्यान रख ला।
1: और ध्यान रखते हुए बाण भाई काम जरूर करवावा। बाण भाई सुनाया रागनी।

आला डंग पिया।

संग चंदर मा वो मेल करिया चाहे था देखियो सबू पी गंदरानी के संगी वो खेल करिया चाहे था और की चक भी द्रौपदी के धर्म ने वो

0: ये तो बहन भाई ने सुनवा दी रागनी। और देखो नीता बहन, आप बात कर रहे थे धरती के स्वास्थ्य की। धरती के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए देखो जैविक खादों का भी बड़ा योगदान है। अगर हम बदल बदल के हर एक 30 साल के बाद हर किलो में अपन जैविक खाद डालते रहेंगे, गोबर की खाद डालते रहेंगे, तो भी हमारी धरती का स्वास्थ्य सही रहेगा।
1: हाँ, केचुआ खाद है या फिर आपने कहा गोबर का, गोबर भी कौन सी बेबे गली सड़ी जो अपनी करोड़िया में 2-3 साल पुरानी हो जाए है। कच्ची में क्यों है भूड बांध उनका ज्यादा खतरा सारा है, तो
0: कच्ची खाद डाल देंगे दीमक लग
1: गई, दीमक भी लग जाए और अपनी जो फसल बो उसमें भी दीमक लगन का या कीड़े ज्यादा लगन का वो खतरा हो जाए है।
0: और धरती के स्वास्थ्य अच्छा करने की आप एक बात करा कि एक फसल भी हमारे पास है जिसका टेम आ रहा है, गवार। और गवार भी

0: कौन तेरे धरती का स्वास्थ्य मृदा अच्छी हो है तो क्यों ना आप ग्वार पर भी भाइया तो बता लिया। देखो ग्वार बोने का सही टाइम आ रहा है भाई, जून के दूसरे पखवाड़े तक ग्वार की बिजाई कर सके हैं।
1: और क्योंकि यह देख बरानी क्षेत्र में एक खरीफ की मौसम है, बढ़िया फसल है जो इस मौसम में बोई जा है। और एक यह अपन क्या करें ना बाट देखा करें नकदी फसल की, तो यह बड़ी महत्वपूर्ण नकदी फसल भी है। और भाई जो ग्वार आपने देखा कि वो आजकल गम है जो ग्लोबल मार्केट के अनुसार बहुत मतलब इसकी डिमांड बढ़ती जान लग रही है, क्योंकि इसकी विभिन्न तरह तरह के जो ग्रेड के निर्माण कई कई तरीके हैं जिससे इस्तेमाल करे जा है जटिल। तो यो क्या हो जाए है कि जो ग्वार है इसमें जो दाने हैं इसमें गोंद घनी मात्रा में पाया जाए है, इसका कारण इसकी जो फसल है वो बहुत बढ़िया रहे
0: औद्योगिक महत्व इसका बहुत बढ़िया रहा है। हाँ क्योंकि अच्छा इसका अपना भाव मिले है और ग्वार की डिमांड हमेशा रहे, तो किसान बहन भाई ग्वार की खेती करके वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे अधिक क्षेत्र में तो ये अधिक पैदावार ले सके हैं और कम खर्चे में ले सके हैं और धरती की मृदा भी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा अपना।
1: हाँ
0: तो खेत की तैयारी किस तरह करें, ग्वार के लिए रेतीली दोमट भूमि बढ़िया रहेगी, उस इलाका में बोवांगे तो कहने का मतलब है कि अब बरानी फसल है इसके ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, हल्की भूमि में भी बोया जा सके है, ज्यादा मतलब दोमट भारी माटी ना हो वैसे जल निकास अच्छा हो तो उसी भूमि में या अच्छी पैदावार देगी।
1: और जीत भाई कलर है या सेम वाली अपनी धरती है तो वह इस खतर ठीक नहीं रहेगी, आपने बताया कि बरानी सही रहेगी। ग्वार की जापा ने अच्छी बढ़िया पैदावार लेनी है तो क्या करें उसने अपनी जो धरती है उसने तैयार बढ़िया कर ले, इस खतर आपने दो तीन बार अपनी जो धरती है उसने जोतना पड़ेगा और बिजाई के समय भूमि अपनी समतल होनी चाहिए और पर्याप्त उसमें नमी होनी चाहिए और उसमें जो खाद
0: खरपतवार
1: मुक्त होनी चाहिए।
0: और कौन कौन सी किस्म है भाई भाई ने बता देंगे, सिफारिश करी जो किस्म है अपना हरियाणा में HG 870 हरियाणा जो 85 से 90 दिन में तैयार हो जाएगी, HG 884 100 से 110 दिन में तैयार हो जाएगी, HG 563 हरियाणा हरियाणा में बोई जाने वाली फसल है 85 से 100 दिन में तैयार हो जाएगी, HG 365 यह भी हरियाणा में बोई जाने वाली फसल है 85 से 100 दिन में तैयार हो जाए है और बुआई का टाइम रहेगा जून का दूसरे पखवाड़ा तक आप इसकी बिजाई कर सके हैं।
1: और बीज की मात्रा विभेज कर आपने जो अगेती फसल लेनी है तो अगेती जो किस्म है HG 365 HG 563 HG 220 और HG 870 HG 884 है जो कि 5 से लेकर 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ बढ़िया रहेगी।
0: और देखो बुआई की अपन बात करने लग रहे थे कि दो तीन में जुताई करके बढ़िया सुहागा पट्टा लगा समतल भूमि करके नमी उसमें रहनी चाहिए और जब इस टाइम जितनी जो धूप कड़क की पड़ने लग रही है इसमें जब दो तीन बारी बाग है तमान खरपतवार तो मुक्त हो जाएगी और भूमि अपनी में जो जमा होगा बड़ा अच्छा रहेगा। बिजाई की विधि रहेगी HG 870 व HG 2.2-20 किस्म के लिए 45 सेंटीमीटर जबकि HG 365 HG 563 व HG 884 को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधा पौरा विधि से बीजे और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखे। गवार का बीज 5 से 6 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए।
1: हाँ और इसमें जब खाद की बात आ जाए तो खाद का प्रयोग अपन वह आप बार बार कहा है कि अपनी जो मिट्टी की उसने जांच करवा ले उसके रिपोर्ट के अनुसार इसमें करें। जिस तरह फसल की बिजाई के समय 16 किलोग्राम फास्फोरस और सिंगल सुपर फास्फेट तथा 8 किलोग्राम है नाइट्रोजन और प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें गिर दे, यदि भूमि में गंधक की कमी हो तो 8 किलोग्राम गंधक प्रति एकड़ और बिजाई ड्रिल तक रहे। बीज को राइजोबियम का जो कल्चर का जो टीका लगा उससे पहले उसने अपने बीज ने उपचार जरूर कर ले।
0: और अंतर खरपतवार का नियंत्रण भी हर चीज में जरूर हुआ है, उसके लिए अपन निराई गुडाई बिजाई तय 25-30 दिन के पहले कर ले और निराई गुडाई जो बाद में आप सहूलत करेंगे वह बहुत जरूरी है। जब अपने पौधे 20-25 दिन के हो जाए तो निराई गुडाई आप करें, आवश्यकता हो तो बीच में अपने लगे कि अगर खरपतवार आवे तो कोशिश करें कि आप सहूलत करें 15 दिन के अंतराल पर हल्का हल्का कसोला आप काटते रहो ताकि उसमें खरपतवार ना जमे। और बात करें सिंचाई की
1: तो भाई आमतौर पर आप देखा हम मानसून है जो अपनी वर्षा हो जाए है तो बोई गई जो अपन फसल बोई है उसमें सिंचाई की इतनी घनी आवश्यकता नहीं पड़ती और जब भाई फली फली बनने लग गए तो बिल्कुल वर्षा ना हो तो एक हल्की सी सिंचाई जरूर कर दे और जब फसल की पत्ती पीली पड़न लग जाए झड़न लग जाए और फलियां का रंग जब भूरा भूरा हो जाए

0: तब अपनी फसल ना काट लें और कटाई के बाद फसल ना के करा कुछ दिन खातर धूप में सुखा लें और फसल जब पूरी तरह सूख जा जब इसकी गाई कर ले और अच्छी प्रकार से सुखा कर दाने हैं उन्हें नमी रहित कर ले ताकि आपने उसका बढ़िया रेट मिल सके।
1: और फसल चक्कर बाद कहें तो गवार के बाद आप आया फसल बो सके हैं, इससे भी फसल चक्र अपनाने तभी अपनी धरती का स्वास्थ्य अच्छा हुआ है। तो इसलिए हम आज ये बात करने लग रहे हैं क्योंकि उस तभी अवस्था में ग्वार का जल्दी पकने वाली किस्म है तो जो HG 365 HG 563 HG 2-20 HG 870 HG 884 ही बीजें जिनकी बिजाई जून के दूसरे पखवाड़े तक हो जाए। सिंचित क्षेत्र में गवार गेहूं गवार जो का फसल चक्र भी आप अपना सके हैं और पौधे संरक्षण के लिए उपाय कभी कभी गवार फसल का तेल का कर्मण उज्जय तेल लगा गवार फसल के ऊपर तो उसकी रोकथाम के लिए 20 मिली मेल्थियन 50 सीसी की 200 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ छिड़काव कर दें। बीमारियों की रोकथाम जरूरी है, बीमारियों की रोकथाम के लिए बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। बीज उपचार के लिए 6 लीटर पानी में 6 ग्राम सेप्ट्रोस्ट्राइक्लिन का तब घोल में इस घोल में 6 किलोग्राम गवार का बीज आधे घंटे तक भिगोए बाद में बीज को छाया में सुखा के बिजाई कर दें। अगर हम बीज उपचार करके बोएंगे तो बीमारी आने की आशंका बहुत कम
0: हो जाए है। तो इसमें आपने बताया कि फसल पर जो छिड़काई है बिजाई के 5-60 दिन बाद या फिर कोई आपने नहीं लगा कि हाँ कि मैं बीमारी इस पागी तो आपने बताया था स्टेप्टोसाइक्लिन वो के एक रहें 30 ग्राम प्रति एकड़ तो उस पर छिड़क दे और 200 ग्राम प्रति एकड़ ने उसमें मिला ले 200 लीटर पानी में मिला ले और 15-20 दिन के अंतर पर उस पर 2 बार छिड़काव जरूर कर दे।
1: और छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के गवार की अच्छी फसल ले सके और गवार की फसल बोने का हमारा उद्देश्य ये पूरा हो कि हमारी उर्वरा शक्ति हो बढ़े क्योंकि गवार की पत्तियां जब उसमें हमारे भूमि में आप मिलावांगे जब दूसरी फसल बोवांगे तो उससे भी हमारी आने वाली फसल अच्छी होगी और हमें कम खाद डालनी पड़ेगी और साथ साथ हमें एक नकदी फसल है और गवार की फसल का अगर फली तोड़ के बाजार में बेचेंगे तो उसका भी हमें अच्छा भाव मिलेगा।
0: ठीक और बेबे देखिए अपना जो मौसम है वो भी अपना दौर पहुंच गया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो अपना जो आज का मौसम है उसके अनुसार हरियाणा में आज का मौसम आमतौर पर भाई सुख से रहने की संभावना थी रहा भी है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी व लू चलन की संभावना है जो चालन लाग रही है सावित्री बेबे। और तापमान अपना देखो आज अपन देखा है कि 40 से लेकर 45 डिग्री के आसपास रहा है इतना ही रहने के अनुमान है जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री से 31 डिग्री तक दर्ज किया गया है और स्थिति बनी रहेगी कि आप तेज धूप कल भी शायद देखा जाएगा तेज धूप खिलेगी और आसमान मुख्यतः अपना साफ दिखेगा और दिन के समय 10 से लेकर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक गर्म हवाएं चलने की संभावना।
1: लू चल रहे सीधी बात है नीता भाई। हाँ। और लू अपन बचाव ही करना है इस टॉपिक पर अपना बाद में बतलाऊंगे अपना जो आज की सार मंडी के बाजार भाव आगे है सरसों का भाव रहा 6476 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं भी क्या 2605 से 2590 रुपए प्रति क्विंटल
0: और कपास का रेट 7870 रुपए प्रति क्विंटल
1: और गवार भी क्या 3545 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल बाजरे का भाव रहा 1970 से 1950 रुपए प्रति क्विंटल मूंगफली भी की 5570 से 5550 मटर भी की सूखी मटर की बात करें आप 2220 से 2228 रुपए प्रति क्विंटल ये थे इसार मंडी के आज के बाजार भाव।
0: और जो आप बात कर रहे थे कि गर्मी पड़न लग रही है लू होने लग रही है तो
1: इस पर आप बड़े कार्यक्रम हमारे गांव में फिर बातचीत करेंगे और इसी के साथ कार्यक्रम किसान वाणी का समय समाप्त होने लग रहा है थोड़े से अंतराल के बाद मिलेंगे कार्यक्रम हमारे गाँव में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम भारे गांव।

0: कार्यक्रम हमारे गांव में एक बार फिर बहन भैया का स्वागत कर रहे हैं आपकी बहन सावित्री
1: और आपकी बहन अनीता सारी बहन भैया ने राम राम।
0: और अनीता बहन देखे आप बात करने लग रहे थे कि नौ तपा चल पड़े हैं 25 तारीख तो लाग गए हैं
1: आज दूसरा दिन है बे नौ तपा अपना दिखाने लग रहा है
0: असर पूरा दिखा रहे हैं क्योंकि 9 बजे के बाद ही आप बाहर निकलना
1: है 9 बजे के बे तड़के जब 7 बजे उठाने लग गए तो फरा हो रहे हैं
0: और हम बहन भाई तेन को आगे नो तपा से लू से बचने के उपाय करेंगे के खान पान में सावधानी रखें पापा बहन भाई से बातचीत करेंगे नो तपा जिसने कहते हिट स्ट्रोक
1: हाँ
0: क्योंकि सीधी लू लाग गए हैं
1: गर्मी पड़े
0: गर्मी सूती पड़े है इससे बचन खातर आपने बहुत ज्यादा जरूरत है कोशिश यह करें कि आप 9 बजे के बाद नहीं करें तो 10 बजे के बाद 10 से लेकर 5 बजे तक बाहर ना निकले और बहुत ही जरूरी है तो आपने निकलना भी पड़ेगा तो आपने करना कि एक पड़ेगा कि इस टाइम शरीर को ठंडक देने वाले पदार्थ है और हल्के भोजन आपने करने चाहिए हिसार जिसार जो इलाका है बहुत गर्मी तेज इसमें हो जाए है और है तो लागे तो टेम्परेचर तो 45 के आसपास है दिख 50 जमा सीधा लग गया है तो उसने आमतौर पर के खावा पीवा इस पापा में बातचीत करने लग रहे हैं
1: तो बात यह है बेबे पहले तो अपन अपना बचाव करना पड़ेगा खुद ने हाइड्रेट रखना पड़ेगा हल्का खाना पड़ेगा सीधी धूप तो अपन बचना पड़ेगा और सब तो जरूरी आपने बात करी थी कि 12 बजे तक लेकर शाम 4 बजे तक हो सके जितनी कोशिश हो सके आप बचा ना लिकड़ा और जब भाई मजबूरी में लिकड़ना भी पड़ गया तो अपने सिर ने पूरा ढक कर सूती कपड़े पहरे खुले कपड़े पहरे ताकि आप उस लू तक गर्मी तक बचा सका और उस तक नो तक बचने खातर अपने शरीर ने जितना हो सका आप पानी पी सका तो उतना पानी पीना चाहिए भरपूर मौसमी फल है जैसे तरबूज है खरबूजा है खीरा ककड़ी इसका अपन सेवन करना चाहिए जिसमें घना तक घना पानी हो ठंडी ड्रिंक्स है शरीर में जिस तरह अपन ज्यादा अपन एनर्जी दे दे संतुलन बनाए रखा है जो कर लस्सी है अरे एक बात बता दू बे राबड़ी सबसे बड़ी आज जो गर्मी में राबड़ी है चाहे वो आप मोठ की ले लें बाजरे की ले लें या फिर अपने चने की बना ले मतलब राबड़ी इसी चीज है कि जो अपने शरीर ने चाहे तड़के एक बार लेकर गया जैसे आप खेत के में करे जाओ चाहे कितने अपने बाहर का काम करना तो अपने गर्मी तो वह बचा लेगी
0: बिल्कुल अनिता बहन ठीक कर रही हो आप क्योंकि पानी खूब पीवे कई बहन भाई अगर तेस्तों को ना दी आपने प्यास न लगे फिर भी आप आधा घंटे में 40 मिनट में पानी थोड़ा थोड़ा जरूर पीते रहे दिन में 4-5 लीटर पानी अपन पीना चाहिए शरीर के लिए बहुत अच्छा है और कोशिश यह ना करें अपने ज्यादा प्यास लगे तो एकदम ठंडा पानी पी ले बाहर ताए फ्रिज का पानी पी ले नहीं मटके का पानी नॉर्मल पानी सबसे बढ़िया है आपके लिए मटके का पानी इस टाइम बहुत ठंडा पानी एकदम शरीर बहुत गर्म है और पानी बहुत ठंडा पी लिया तो गर्म सर्द हो जाएगी तो वह भी अपनी दिक्कत हो जाएगी अपन बात करें तो देखो छाछ की रबड़ी की रबड़ी तो एक इतना बढ़िया गजब का पदार्थ अनीता बहन देख लासी तो बने है लासी में ला के पीवा तो बहुत शरीर ने ठंडक देवे है और लू तो अपने बचा है और इस टाइम नींबू पानी कोशिश करें नींबू पानी पियो नमक और चीनी के साथ डाल के
1: नारियल पानी
0: किसी बहन भाई का देखो ज्यादा बड़े प्रेशर की बीपी की दिक्कत हो तो आप उसमें नमक ना डाले पर नींबू पानी जरूर पीवे नारियल पानी पीवे आम बनना आप घर में बना सके अगर रहने बहन हमारे कच्चा आम का वो पी सके
1: सत्तू
0: ओआरएस का गोल है सत्तू है शरबत है शरबत है और एक बहन भाई न्यू कहेंगे जुकर स्कूल में आप छोटे बच्चे ने बोतल भर के पानी की दे उन्हें वो पीना साधे इसी तरह आप कड़िया जाओ जो करता बाहर थोड़ी सी दूरी पर जाओ आपके साथ में पानी की बोतल जरूर रखे आपने जब भी जरूरत महसूस होता आप बीच बीच में पानी पीते रहे क्योंकि ये शरीर में पानी और नमक का संतुलन बनाए रखना गर्मी के मौसम में बहुत जरूरी है
1: और सावित्री बेबे एक बात हो रहा है जब आप अपनी तो सोच लिया हाँ कि अपना क्यूकर अपना शरीर ढककर रखना है पानी का ध्यान रखना है खान पान का ध्यान रखना है आई अपने जीव जंतु भी हैं गर्मी में वह भी तड़पन लग रहे हैं तो उनका भी ध्यान रखे जो अपनी जितनी भी अपनी क्षमता है अपने में उतने अपने मट्टी के सकोरे ले ले भाई जगह जगह

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: और बाणा भैया का मनोरंजन भी करवा दिया अनिता बाणा है। मौत पर मैं थोड़ा सा शरीर ठंडा रखने के लिए आप आयुर्वेदिक उपाय भी कर सका, जैसे ना शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, चंद्र अनुलोम विलोम है, यानी चंद्र सूर्य से आप अनुलोम विलोम करेंगे तो भी अपना शरीर ठंडा रहेगा। सिर में ठंडे तेल की मालिश कर लें हैं, उससे भी थोड़ा सा अपना शरीर ठंडा रहेगा। तो मिट्टी का लेप भी आप लगा सकते हैं, किसी बार लू लग गई है तो मिट्टी का लेप लगा ले, ठंडी पट्टी सिर के ऊपर रख ले, उससे भी तापमान शरीर का ठीक रहेगा और अपना ठीक रहेंगे।
2: हाँ, अरे बात अपन नोत पे की करन लाग रहे हैं, तो नोत अपा वो आया करा भाई, जो मई का जो आखिरी के नौ दिन है खूब तपया करा है, और वो क्या करा है, जब सूरज है रोहिणी नक्षत्र में चला जा है, जब ये अपना नोत अपा, नोत अपा का मतलब नौ दिन तपना, और यो महीना भाई ईब का तो अपना 25 तक लेकर 2 तारीख तक ही है
1: आमतौर पर।
2: हाँ हाँ, और खेत के लिए बहुत फायदा है, अपने बड़े बूढ़े कया कर दे कि जितना धरती तपेगी उतना ही अपने लिए, अपनी धरती के लिए, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा। जमीन के कीड़े मकोड़े हैं या खरपतवार है, घास फूस है, वो खत्म हो जाएगा, इस तरह मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वह भी बढ़ जाएगी और मानसून के समय फसल बहुत बढ़िया होगी।
1: बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे किसान भाइयों के खेत खाली हैं,
2: हाँ,
1: उनमें बा के छोड़ दें, यानी 2-3 बारिश में हल निकाल के त्रिफा निकाल के छोड़ दें, ताकि हमारी जो धरती की ताकत है वह बढ़ जाए।
2: और लोक परंपरा के अनुसार नौ तपा है, खूब गर्मी पड़ा है, तो आने वाले मानसून में भी अच्छी बरसात होगी, जब तपेगा तो जमा जम बारिश बढ़िया होगी, और इस महीना में इन दिनों में दान का भी बहुत महत्व है, चाहे पानी का हो, चाहे पक्षियां खातर पानी के सकोरे धरण का हो, या चलते लोगों ने पानी पियान का हो, छबील लगाने का हो, तो इसका बड़ा पुण्य माना गया है।
1: बिल्कुल है, देखो हम तो सारे बहन भाई कहना चाहेंगे, चाहे गाँव है चाहे शहर है, अपनी घर की छत के ऊपर एक कसोरा में या किसी और बर्तन में जो ताता ना हो, मिट्टी के बर्तन हो, उसमें आप पानी भर के धर दें और साथ में दाना भी धर दें, तो आपने बड़ा अच्छा लगेगा। आपके उड़ते ही अगर आपने चिड़िया की चहचहाट सुनाई देवे तो कितना अच्छा आपका दिन जाएगा, क्योंकि जो हमारी होम्स पैरो जिन्हें बोला ना घरेलू चिड़िया, वो लगभग लुप्त सी हो रही है। अनिता बाणा, मैंने खुशी की बात है कि हमारे घर में होम्स पैरो रहे।
2: हाँ, मैंने देखी थी आपकी जवाब बेल हाउस में जो चिड़िया है जब चीची कर है, तो बहुत मतलब मजा सा आ जाए है सुनकर। तो अपने जो बण भाई है आप भी कहेंगे भाई, अपना घर आंगन चाहे छोटा सा क्यों ना हो, एक आधे से बड़े से ला ले, जितने उस पर वो चिड़िया आसकर अपने घोंसले बना,
1: और घोंसले आप बना के लगा दो। देखो दीवारों के ऊपर घोंसले आप बना के, आजकल बने बनाए घोंसले भी आवे है, कुछ टाइम के बाद उड़ा चिड़िया अपने आप आने लग जाएगी, अगर साथ में पानी भी रखे, दाना भी रखे है, अरे घोंसला बना रखे है, तो पक्षी भी इतना दाना नहीं तबाना है भाई, मेरा प्यार से। अगर आप जीव जंतु तो प्यार करें तो पक्षी भी आपने पहचान जाने हैं, हरियाली है, पेड़ पौधे है, तो जाहिर सी बात है कि आपके घर में चिड़िया
2: भी रौनक आ जाएगी। और वही बात है, अपन जमीन के आश्रय मतलब तोड़े हैं, बेबे छीने हैं, तो ईब अपना फर्ज भी बना है कि उन खातर ईब बना कर देवा,
1: बहुत जरूरी है। और हरियाली का तो अलग ही महत्व है, और अपने बात करने लाए थे नोत पे की, तो बहन भाई ने एक छोटी बात और बता दिया कि जब भी आपने लागे कि लू लग जाए है या आप बाहर जाओ हो, तो जो अपने सिर है, कान है, पैर है, हाथ है, उन्हें धोए, ठंडे पानी बैठ जाए, और गीला कपड़ा सिर पर जरूर रख लें। और हम तो कहेंगे कि बहन भाई जरूरी काम है तो आप मत जाओ घर से बाहर, 8-9 दिन की बात है, और ये नोतबा हमारे लिए बहुत सहायक सी दोस्त के आने वाली मानसून में।
2: तो बेबे क्यों ने लग दिया था, फिर अपने बहन भाई का मनोरंजन करवा दिया है, तो सुनाइया रागनी।

देखे एक हाथ में वो चमट्टा ले रहा, तेरा दीख्या भगमा बाणा, वो दूर तयाता वो नजर पड़े मन, वो देख का शक्ल पहचाना, सोना रानी मोस बैठा दी घरा उतर रहा खाड़ा, ओ सारी रोटे ओ गम में

படே திரு சிறப்ப மன்னன் லட்டா பதாயி.

के लाल रंग में वो रंग दुसला वो कांधे कंबल काड़ा सपने के माँ वो मेरे पिया कने को रोप दिया जा।

सपने के माँ, ओ सपने के माँ, ओ मेरे पिया की सा मोटा रासा छेड़ेगा, कान पड़ा लिए ओ साधु होगा, गरते बार में तरेगा, गोरखनाथ फकीर के तू जा पाया हमें पड़ेगा, मेरी आंख खुली जब ओ कुछ ना दिखा यो सारा

0: गोरे गोरे। इसी रागनी के साथ कार्यक्रम मारेगा मौसम समाप्त है। अपनी बहन सावित्री बुगालिया ने
1: और अपनी बहन अनीता ने दे इजाजत।
0: सारे बहन भैया ने
1: राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महारे गांव। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम लोकमंच।

0: हरियाणवी लोक मंच कार्यक्रम सुननिए सारेबान भैया ने आजाद भाई की राम राम। हरियाणवी लोक मंच कार्यक्रम में किसे कहानी गीत रागनी बात और जज्बात हम आपके लिए लेके आ कर जाने माने कवि साहित्यकार लेखक आपते मुलाकात हम करवाया कर रहे हैं, क्योंकि भारत भूमि भक्ति और शक्ति की भूमि रही है, जहाँ ज्ञान का प्रचार और प्रसार के लिए बहुत बड़े बड़े लोक कवि लोक गायक लोक कथाकार और कहानीकार हुए। शिक्षा संस्कृति और संस्कार ये हमारे जीवन का आधार।
1: ये रे पैदा होने ते पहले जो लड़की ने मरवावे और उसका भला कदे ना हो

माटी की धूरी वीर बताई यो जगत वीर ने जाया इस पृथ्वी पे उसी स्वर की जय शक्ति ओरे माया हो ईश्वर अपनी की शक्ति पे ईश्वर अपनी

रचना में से नारी की अजब कहानी। आंचल में रहे दूध हमेशा रे आख्या के मां पानी। आवण दे तू मत ना रोके मत ना कर नादानी। इंसान तने क्यों सारी हाना करी अपनी ये।

कती रवाज गलत से यो लेन देन जे ना छोड़िया ते सारा समाज गलती से यू ना लाई यो ना दिया यो यतराज गलती से के ते तुम सारे गलती में के बाहर दुआ।

0: आज आकाशवाणी सार के साथ जाने माने व्यक्तित्व, विलक्षण प्रतिभा के धनी बहुआयामी व्यक्तित्व, साहित्य और काव्य में अपना नाम आप हैं श्री रूप सिंह राजपुरी, जो कि हमारे गुवाहाटी प्रदेश राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से हैं। आकाशवाणी सार पर रूप सिंह जी आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
0: बात कथा कहानी साहित्य की आ रही है, साहित्य में रुचि रूप सिंह जी कैसे हुई आपकी?
1: ये तो जी बचपन से ही जब मैं पढ़ता था तब बाल सभाओं में मैं खुद की कविता लिख करके सुनाता तो गुरुजन बड़े राजी होते, बड़े खुश होते और उन्होंने मुझे ये नाम दिया रूप सिंह राजपुरी कि नाम रखो, कोई ना कोई उपनाम जरूरी होता है। तो मैं राजपुरी नाम से काफी पहचाना जाता हूँ उधर। मेरी अब तक 21 किताबें आ गई जो हिंदी, राजस्थानी और पंजाबी की है। अखबारों में मेरे कुछ कॉलम चलते हैं, कई अखबारों में लगातार उनमें मेरे कॉलम में लेख वगैरह छपते रहते हैं।
0: गांव कौन सा आपका?
1: मेरा गांव संगरिया तहसील है जी, हनुमानगढ़ जिले में। वहाँ मोरजंड सिखान नाम से मेरा गांव है और मैं मेरे गांव पर किताब भी लिख चुका हूँ।
0: यानी कला संस्कृति और साहित्य पे आपने बहुत काम किया है। बात शिक्षा संस्कृति और साहित्य की करने लाग रहे हैं, हरियाणा और राजस्थान की साहित्य में या बोली में के फर्क है?
1: एक सी है जी, बिल्कुल रोटी बेटी का संबंध है। राजस्थान और हरियाणा का जो बॉर्डर के जो जिले हैं, गांव हैं, आपस में रिश्तेदारियां हैं, एक जैसी भाषा लिपि है, एक जैसा पहराण संस्कृति है, कोई अलग नहीं है हरियाणा और राजस्थान की संस्कृति। बहुत सारे जिले लगते हैं राजस्थान के हरियाणा के साथ।
0: गोगा मेड़ी है, नौर है, बादरा है, इलाहाबाद है, टिब्बी है, ये तो हमारा बिल्कुल रावतसर है, ये साथ लगता है, इलाहाबाद का इलाका है, तो एक गुवाहाटी प्रदेश, वहाँ की संस्कृति, खान पहन, रहन सहन, भाषा और बोली एक सी है। कविता का दौर आपने देखा, खूब आपने लिखी, बड़े कवि सम्मेलनों में आप भाग लेते रहे हैं, पहले और आज के दौर में क्या फर्क आ गया?
1: कवि सम्मेलन आजकल ट्रेंड हो गया है, बहुत महंगे हो गए कवि सम्मेलन करवाने, कवियों की जो उनकी फीस देखते हैं या लोगों में, ट्रेंड तो वैसे का वैसा पड़ा है, बल्कि बड़ा है, भीड़ बहुत होती है, 2-2 लाख। हमारे वहां कोटा में, कोटा शहर में दशहरा मेला होता है जी, 2 लाख लोगों की भीड़ कवि सम्मेलन सुनने

0: के लिए आती है, स्क्रीन लगानी पड़ती है बहुत लंबे लंबे, और पता ही नहीं स्टेज कहाँ है। सारी सारी रात कभी सम्मेलन चलते हैं, अब भी लोग बड़ा इंतजार करते हैं कि कहाँ कभी सम्मेलन हो, तो लोग बसों से आते हैं, इतना ट्रेंड हो गया।
1: कहीं मोबाइल के दौर में थोड़ा सा बदलाव तो देखने मारा है,
0: मोबाइल से लोगों को पता लग गया कि कवि सम्मेलन कोई चीज होती है, कविता भी कोई चीज होती है। सही जो मनोरंजन है ना जी, असली जो मनोरंजन है वो तो कवि सम्मेलन में ही पड़ा है, तो मोबाइल ने तो बल्कि फायदा दिया है कवि सम्मेलन के इस ट्रेंड को।
1: हाँ, घर बैठे बैठाए भी कविता सुन सके,
0: सुन सकते हैं, देखते भी हैं लोग, वो जो आ नहीं पाते जो कवि सम्मेलन सुनने के लिए वो मोबाइल में बैठ के देख लेते हैं।
1: अब आपके लेखन की बात करें, आपने बताया कि 21 किताबें लिखी, किन किन मुद्दों पे आपने जोर दिया?
0: ज्यादातर मैं लिखी है जी कविता पर, और वो भी हास्य और व्यंग्य की कविता, और कहानियां भी मैंने बस मार्मिक कहानियां लिखी, 4 किताब मेरी कहानियां की भी आ गई है, और मैंने व्यंग लेख भी लिखे हैं, निबंध लिखा है, वो निबंध मेरे अखबारों में, रसालों में, मैगजीन पत्रिकाओं में छपते रहते हैं, कॉलमों में मेरे छपते रहते हैं।
1: हास्य व्यंग लोग तनाव में है, तनाव मुक्त जिंदगी हास्य व्यंग के माध्यम से दूर करा जा सके है, तो आज जरूरत हास्य व्यंग की?
0: बिल्कुल जरूरत है, लोग टेंशन से भरे पड़े हैं, अवसादग्रस्त हैं, किसी से भी बात करके देख ले मुंह उतरा हुआ होता है, लेकिन कवियों के पास जो मैं तो ट्रेंड देखता रहता हूँ, हास्य का जो रस है ना, हास्य रस वो सबसे ज्यादा चलता है कवि सम्मेलनों में, प्रोग्रामों में, तो हास्य का तो लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार से कहीं से हंसने का मौका मिले, क्योंकि इस भागदौड़ की जिंदगी में लोगों को हंसने का वर्षों से मौका नहीं मिला होता, वर्षों से लोग हंसे नहीं होते, लेकिन अगर एक अच्छा हास्य कवि उनको मिल गया और उसने बढ़िया चीजें सुना दी, लोग हंस लेते हैं।
1: कोई राजस्थानी हास्य की कोई पुट?
0: देखो, समय किसी के पास नहीं है, टाइम मतलब नए जमाने में लोगों के पास पैसा बहुत हो गया, सुख सुविधाएं बहुत होगी, लेकिन वक्त पता नहीं कहाँ चला गया, लोग बिना काम के बिजी रहने लग गए, तो उस पर मेरी एक राजस्थानी कविता है, मैं आपको बताता हूँ समय की, या हास्य की बात है, इसमें कहीं व्यंग तो नहीं है, हास्य है। वो है कि एक दोस्त के कन्ने दूजा दोस्त आया, एक दोस्त के घर पर दूजा दोस्त आया, और आते ही बन उलाना सुनाए, क्या यार सारा दिन सिर काम ही काम में सिर खपाओ हो, कदे मेरे घरे मिलन को नहीं आओ हो, तो घर वाला दोस्त बोलिया, तने लाग रही है मिलाप करने की, और अठे फुर्सत नहीं है मरने की। इतना सुन भी की घरवाली बाजी बाजी आई, बोली अभी अभी करी है मैं घर की सफाई, और अब नंबर लगाना है गाबा धोने का, पति देव जी मरना जाइयो, मेरे कने टाइम नहीं है थाने रोने का। तो लोगों के पास तो टाइम की इतनी शॉर्टेज होगी, ये इस प्रकार के हल्की फुल्की बातें सुनकर के लोग हंस लेते हैं। पति पत्नी के संबंध है, गुरु चेले के संबंध है, शिक्षा स्कूलों में बहुत सारा मनोरंजन निकलता है, राजनीति में बड़ा मनोरंजन निकलता है, ये हमारी पुलिस है, ये इस पर लोगों ने बहुत बहुत कुछ बना रखा है, तो हंसी मजाक निकलता रहता है। ये कुछ विषय होते हैं प्रिय इनके हास्य कवियों के, तो उन पर बात केंद्रित हो जाती है, तो हास्य अपने आप निकलता है उसमें से।
1: राजस्थान के साहित्यकार श्री रूप सिंह राजपुरी आज आकाशवाणी इशार पे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। राजस्थान से आप हैं, राजस्थान और हरियाणा में से तो साथ लागते हैं, थोड़ा बहुत फर्क है तो क्या है?
0: स्टैंडर्ड का फर्क है, हमारे राजस्थान की संस्कृति कल्चर अभी भी मोटा पहनना, मोटा खाना, पैदल 10 कोस को मुंह कर लेंगे हमारे राजस्थान के आदमी कि भी पैदल जाना उस गांव जाना, चलो पैदल चलते। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ का थोड़ा जो लिविंग स्टैंडर्ड है,
1: पानी है
0: यहाँ हमारे, वहाँ पानी के अभी भी लोग संभाल के रखते हैं, अभी भी काफी सारा एरिया आजाद सिंह जी ऐसा है कि जैसे ही कोई बटाऊ आया उसको 2 लोटों में पानी ला के देते हैं, 2 लोटों में, एक में खारा पानी होता है, वो कहते हैं जी इससे मुंह धो लो, और दूसरा ये मीठा पानी है जी इसको पी लो, वो जो पीने योग्य होता है उसको मीठा कहा जाता है।
1: यानी जल संरक्षण की मुहिम वह जान सके है जिसने पानी का तोड़ा दिखा है। वैसे तो गंगानगर जिले में या बाकी कुछ इलाकों में पानी बहुत है, लेकिन हम जैसे गोगामेड़ी नोर राउतसर की बात कर रहे हैं, हनुमानगढ़ के आसपास की बात कर रहे हैं। जांडी एक बहुत बड़ा पेड़ है राजस्थान का, उसकी क्या खास बात है?
0: वो गर्मियों में हरा होता है, जब लू चलती है बाकी सारे पेड़ पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन वो उस समय उस पर जवानी आती है, एकदम हरी हो जाती है, उसको बोलते हैं संस्कृत में भी उसका कोई नाम है,
1: लूंग है वैसे तो उसके पत्तों का नाम,
0: सांगरी बोलते हैं उसको, सांगरी, उसकी सब्जी बनती है और वो 1000 रुपए किलो बिकती है। उसका जो पत्ते झड़ जाते हैं तो वो

0: भेड़ बकरियों को खाने के लिए उनका चारे का काम करती है, उसकी लकड़ी का फर्नीचर बड़ा अच्छा बनता है, और वो राजस्थान की जांटी कह लो उसको, हम तो खेजड़ी कहते हैं, खेजड़ी, और खेजड़ी तो जनजीवन के साथ जुड़ी हुई, उसकी पूजा करते हैं लोग खेजड़ी को। अब गर्मी के दिनों में पानी डालते हैं, जिस खेत में खेजड़ियां ज्यादा होंगी वो आदमी अमीर है, खेजड़ी का छांगण उसको छांग करके वो ईंधन के रूप में बेचते हैं।
1: बताते हैं कि रिश्ता करनिया या सगाई करनिया भी नहीं पूछे आपके खेत में कितनी जांडी
0: खेड़ी है, खेड़ी खेजड़ा या खेजड़ी या खेरड़ी बोलते हैं हम लोग, तो वो हमारे एरिया में बहुत है जी। अब जहां जहां पानी लगने लग जाता है वहां से वो कट जाती हैं, लेकिन बरानी क्षेत्र में खेजड़ी खड़ी है, वो ही लोगों के लिए फसल का रूप है और उसको छांग लेते हैं। और ये बताते हैं आप, इसको कोई अतिशयोक्ति ना समझे ना, कहते हैं कि एक अपने जीवन में खेजड़ी का एक पेड़ 20 लाख रुपए की आमदन दे जाता है
2: जी।
0: 20 लाख की आमदन खेजड़ी का एक पेड़ अपने पूरे जीवन में अपने मालिक को दे जाता है।
1: और जो पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में अगर उसका जिक्र करें, उसका कोई मुकाबला ही नहीं
0: नहीं है बिल्कुल। वो खेजड़ी के पेड़ के लिए तो हमारे बिश्नोई समाज के 363 लोग शहीद हो गए थे, करिंदे आए और उनको लाड़ों से काटने लगे, तो एक एक पेड़ से एक एक आदमी चिपक गया और उनके करुंदन ने उनको शहीद कर दिया। अमृता देवी ने उस आंदोलन की अगुवाई की थी। अब अमृता देवी को मानते हैं, उसके साथ खेजड़ी को मानते हैं, बिश्नोई धर्म तो खेजड़ी को पवित्र मानता है।
1: बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना बलिदान दिया। बात राजस्थान की आसपास के इलाके की करने लग रहे, भाईचारा किसान लोगों का
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी देख, मैं तो ये कहता हूँ विदेश में अगर कहीं भाईचारा है ना, तो वो हमारे राजस्थान में ही है, क्योंकि राजस्थान में अभी तक प्राणी कल्चर, प्राणी संस्कृति पड़ी है। अभी भी कुओं पर बहुएं पूजा करने के लिए, जलवा पूजने के लिए जाती हैं, अभी भी कुओं को लोग संभाल के रखते हैं, जबकि कुएं अब काम में नहीं रहे क्योंकि पानी घर में टोंटियों से आने लग गया, लेकिन फिर भी कुओं की साफ सफाई करनी, जोड़ जो होता है, जोड़ जोड़ा पानी सरोवर तालाब गांव में, उसकी बड़ी संभाल रखते हैं लोग। उनको पता है कभी भी ये पानी तो बंद हो सकता है, लेकिन वो वर्षा का जो जल संग्रह करके रखना है, वो यही जल स्रोत काम आएंगे।
1: बोली का मिठास, जी का प्रयोग राजस्थान में खूब करा जाए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी का की बोलते हैं हमारे उधर जोधपुर साइड में, तो इतना है अगर कोई गुस्से हो गया, लड़ाई हो गई, तो वो आदमी उसको गाली देने का उनका तरीका ये है कि अब आप चुप कर लियो वरना मेरा जूता थारे माथे बिराजे लिया, मेरा जूता थारे माथे बिराजे लिया, मतलब जूतों से पिटूंगा, ये नहीं कहते वो,
1: ये भी एक व्यंग है,
0: व्यंग है, मेरा जूता तेरे माथे पर आएगा। हाँ। ये कहने का मतलब वो कितने धैर्य के साथ, कितनी शांति और शालीनता के साथ वो गाली भी देते हैं, तो इस तरीके से देते हैं, मिठास तो बहुत भरा पड़ा है। आओ पधारो, बच्चे के लिए भी सम्मान है,
1: ये एक सम्मान की बात,
0: सम्मान देने की बात है, बड़ों को सम्मान देने की बात। ये कल्चर अभी भी राजस्थान में जिंदा है, सब जगह नहीं है उस रूप में, अभी नहीं है पुराने रूप में, लेकिन अभी तक भी ये कल्चर, ये संस्कृति, ये हमारी सभ्यता अभी भी जीवित है।
1: रेडियो से भी आपका जुड़ाव रहा?
0: मेरा भी रहा है, मैं वहां अटपटे सवाल चटपटे जवाब, जोगा सिंह कैथ बहुत प्रसिद्ध अनाउंसर रहे हैं हमारे,
1: उसके साथ वैद भी रहे
0: जी रहे, तो मैं उनके साथ प्रोग्राम करता हूं
1: आकाशवाणी सूरतगढ़ में,
0: सूरतगढ़ में, और मैं अभी भी यदा कदा जब भी वो बुलाते हैं तो किसी न किसी प्रोग्राम में, कोई वार्ता देने के लिए, कोई कविता करने के लिए जाता हूँ। जब से शुरुआत हुई है उसकी, तब से मैं समय समय पर जाता रहता हूँ।
1: सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास में रेडियो की भूमिका निभा सकता?
0: बहुत अच्छी भूमिका निभाता है जी रेडियो। आज भी देखो टीवी का जमाना आ गया, मोबाइल का जमाना आ गया, लेकिन रेडियो ने अपना अस्तित्व अभी तक भी खोया नहीं है। अभी भी रेडियो को सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है वो पुरानी पीढ़ी के हैं, नए बच्चे मोबाइल से रेडियो सुन लेते हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग, वो जो बुजुर्ग लोग हैं, वो दोपहर में उनके पसंदीदा प्रोग्राम सुनते हैं रजाई में, जब तक वो सुन नहीं लें उनको नींद नहीं आती। ये ट्रेंड अभी तक भी चल रहा है और रेडियो पर बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, उनको लोग सुनते हैं, और टीवी की बजाय हम तो तरजीह रेडियो को ज्यादा देते हैं।
1: देखो हम भी आकाशवाणी सूरतगढ़ के, बीकानेर के, चूरू के कार्यक्रम सुनते रहे हैं, जैसे एक कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू आ करता शुक्रवार को रात को 9:30 बजे राजेश चड्ढा जी दिया करते, क्या अंदाज राजस्थानी का। तो इस तरह के सतत प्रयास आकाशवाणी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए करता रहे।
0: मिट्टी की खुशबू प्रोग्राम जो है वो कारण ये है कि हमारे वो गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में पंजाबी लोग बहुत हैं, लगभग आधी जनसंख्या पंजाबी बोलने वालों की है, तो उनके लिए कोई और प्रोग्राम था नहीं पंजाबी का, तो राजेश चड्ढा, तो उन्होंने एक घंटे का एक प्रोग्राम किया, फिर बाद में आधे घंटे का किया, उसमें अच्छे अच्छे गीत जो आम तौर पर रेडियो पर सुनने को मिलते नहीं थे, पंजाबी के लोकगीत, वो ढूंढ के लाते थे और पंजाबी में बोलते थे, और उनका लहजा और उनकी जो आवाज में मिठास है उसके लोग दीवाने थे। वो प्रोग्राम वैसे को वैसे ही लोकप्रिय है।
1: राजस्थानी हरियाणवी संस्कृति आगे पले बढ़े, संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे श्री रूप सिंह राजपुरी जी?
0: मैं ये कहना चाहूंगा इसके बारे में कि कलाकारों का, साहित्यकारों का आपस में दूसरे प्रांत में जाकर के प्रोग्राम करने का सिलसिला शुरू होना चाहिए। यहाँ से डेपुटेशन उधर जाए, वहाँ की कल्चर संस्कृति के बारे में जाने, वहाँ के साहित्यकारों से मिले, वहाँ वाले इधर आए, इस प्रकार से ये एक प्रकार से राजदूत बन के अपने अपने प्रांत के अपनी अपनी भाषा के साहित्यकार ही आएंगे ना, तब जाकर के इस बात को बढ़ावा मिलेगा। बाकी अपने प्रांत में बैठे रहे, हम उधर बैठे रहे, आप इधर बैठे रहे, तो वो तो कुंद हो जाएगी बात। एक दूसरे प्रांत में जाएं, कभी उधर के इधर आएं, इधर के कभी उधर जाएं, कभी सम्मेलनों में भाग लें और ज्यादातर साहित्य का आदान प्रदान हो। करने वाले कर रहे हैं। केसरा राम जी पंजाबी के साहित्यकार हैं, कहानीकार पंजाबी के, वो एलनाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन वो राजस्थानी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, लिखते पंजाबी में। वैसे ही मेरे को भी उनके समकक्ष मानते हैं लोग कि भैया आप पंजाबी होकर के राजस्थानी में लिखते हैं। तो इस तरह से और लोगों को भी दूसरी भाषाओं का सम्मान करते हुए उस भाषा में लिखना चाहिए।
1: कवि, बादल, पक्षी और आकाशवाणी, कोई सीमाएं नहीं
0: ना, बिल्कुल इनके लिए सीमाएं होती नहीं है, सब लोग सम्मान करते हैं। मैं आता हूं आपके हरियाणा में भी, कवि सम्मेलन में आता हूं, और आप लोग भी आते ही रहते हैं उधर हमारे राजस्थान में। तो इस प्रकार से ये जो आदान प्रदान है, आप जो भाषा बोलते हैं उस भाषा के दीवाने हमारे राजस्थान में बहुत हैं। आपके प्रोग्रामों को लोग देखते हैं मोबाइल के माध्यम से, तो बड़े पॉपुलर है, क्योंकि ये टच में ही है मेरा। रावत सर जो है हनुमानगढ़, पूरे का पूरा जिला नौर, भादरा, तो बिल्कुल रोटी बेटी का संबंध है, तो वहां आपके प्रोग्राम बड़े पॉपुलर हैं।
1: और अपना सांझा देवता गोगा मेडी,
0: गोगा मेडी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है गोगा मेडी का, बड़ी मान्यता है, हिंदू मुसलमान सिख सब लोग उस लोक देवता को मानते हैं।
1: इस प्रकार से अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रंग कर्मियों को, साहित्यकारों, कलाकारों और कहानीकारों को बहुत अपना अच्छा योगदान देना होगा। श्री रूप सिंह राजपुरी जी हनुमानगढ़ राजस्थान से आज हमारे साथ हैं, इतने बढ़िया ज्ञान लाभ की जानकारी दी, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे से बातचीत की। आपको और आपके जितने भी श्रोता लोग हैं उन सबको मेरी ओर से राम राम, नमस्कार।

कार्यक्रम आपने किसक लाग गया इस बारे में ठोस ठीक प्रतिक्रियाएं जरूर लिखा करें। इस पते पे कार्यक्रम हरियाणवी लोकमंच द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी एसआर पिन 125001। इसी के साथ ही आज का हरियाणवी लोकमंच कार्यक्रम समाप्त करने की अपने भाई आजाद दुवन ने दी अनुमति। सारे बन भैया ने राम राम।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: दादी कौन सा प्लांट है
2: टेंजरीन बहुत मीठा होता है तोड़ना नहीं है फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक अभी करता हूँ
1: दादी रुको श्रृंखला क्लिक मत करना
2: क्यों
1: ये SMS स्कैम है क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी
2: थैंक्स गप्पू बचा लिया ये रे तेरी समझदारी का फल
3: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो

संदेशों से पहले आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम लोकमंच। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार के प्रसारण। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं खुला आकाश के तहत एक फिल्म से नगमे। और आज जिस फिल्म को हमने आपके लिए चुना है उसका नाम है आईना। 1991-92 में आई ये फिल्म अपने समय में बेहद हिट रही थी, न सिर्फ अपनी कहानी की वजह से बल्कि गीतों की वजह से, गीत और संगीत की वजह से भी ये फिल्म पसंद की गई और आज भी इस गीत के नगमे बेहद पसंद किए जाते हैं। इस फिल्म में काम किया था जूही चावला, अमृता सिंह और जैकी श्रॉफ ने। आइए फिल्म आईना का सुनते हैं ये पहला गीत।

श्रोताओं, आज आपने सुनी फिल्म आईना के नगमे। कार्यक्रम था एक फिल्म से खुला आकाश के तहत एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार के प्रसारण। श्रोताओं, अब से चंद लम्हों के बाद आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार और उसके तुरंत बाद हम आपको लिए चलेंगे विविध भारती प्रतीक्षा के बस चंद लम्हे। और हमारे साथ

से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने की

0: के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचो सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने

0: व्यापार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से

0: बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। सीबीएसई ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch Inter-Pacific Maritime Surveillance Collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said, now the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Shivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the High-Level Committee on Demographic Change.
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
3: The committee will submit its report within 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sancho border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
5: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
6: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. However, since these drones eventually land on Indian territories, we must remain highly vigilant about those who may use the materials carried by them for anti-national activities. Effective neutralization will require strong coordination with civil authorities and district police along with prompt and result-oriented action at every level.
5: परिणामलक्षी कार्यवाही ही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: मिस्टर शाह सेड स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज इन्वॉल्वड। ही स्ट्रेस्ड दैट सिंस ड्रोन्स लैंड इन द इंडियन टेरिटरी, क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द लोकल पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज असेंशियल टू आइडेंटिफाई दोज रिसीविंग सच कंसाइनमेंट्स एंड टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स इफेक्टिवली। क्वाड नेशंस टुडे लॉन्च्ड द इंटर पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस कोलैबोरेशन एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द कोऑर्डिनेशन इन मैरिटाइम सर्वेलेंस। Addressing a press conference in New Delhi after the conclusion of the meeting, Additional Secretary in the Ministry of External Affairs, K. Nagaraj Naidu, said, Foreign ministers strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. He said that in the joint statement, terrorist attack in Pahalgam was condemned. Mr. Naidu said the meeting reaffirmed Quad's commitment to a free and open Indo-Pacific.
7: The meeting reaffirmed the Quad's commitment to a free and open Indo-Pacific and emphasized that the Quad continues to evolve as a practical and an action-oriented platform, delivering tangible benefits for the region. Discussions focused around four pillars of Quad cooperation,

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, आज के फनकार। इस कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: श्रोताओं नमस्कार।
4: इन्ना सोना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल, एनु वेखे जे कुड़िया तो कहंदी ओ
3: मांजा। जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।

25 मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

करण के पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

इस फिल्म में करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपने एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

करण जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को मां हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी मां हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितने भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर

2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माई नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी। तो

0: मानेना।
1: साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

करण जौहर फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

अवतार यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजात खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

कई सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

करण जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आई जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।

साल 2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है FM बैंड 102.3 MHz पर।

आपका प्यार आपका इंतजार और ये है आप सबका ख्वाब आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर और पेशे खिदमत है आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे जो आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम है और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबकी मेजबान सारिका शर्मा कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, आप भी इंतजार कर रहे हैं और सच बताएं तो हम भी कब से इंतजार कर रहे थे कि हमारे इस कार्यक्रम के लिए आप सबके संदेशों की बाढ़ कब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन को भर देगी। और जैसा कि हमेशा होता आया है वैसा ही हुआ। आप सबके संदेश हमें मिल चुके हैं और फिर भी एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि 9:30 बजे तक अपने नाम हमें जरूर भेज दिया कीजिए। दोस्तों, जो इंसान धीरज रख सकता है वो अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी में सब कुछ पा सकता है, क्योंकि धैर्य इंसान का सबसे बड़ा मित्र है। जहां हमारी कोशिशों की ऊंचाई अधिक होती है दोस्तों, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। और ये बात सच है कि जिसकी मेहनत में सच्चाई और ईमानदारी होती है धैर्य होता है। समय उसका साथ देता है, हमेशा साथ देता है। और किसी ने सच ही कहा है कि झूठ और दिखावा कितना भी तेज क्यों ना हो, मंजिल तक केवल और केवल आपका सच और आपकी मेहनत ही पहुंचती है। और लीजिए, आपकी मंजिल आ चुकी है और हमें ढेर सारे हमारे श्रोताओं के नाम मिल चुके हैं। हमारे पहले श्रोता हैं गांव खारिया, जिला सिरसा, हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंद्रा, मुकेश, दिनेश, आशु, बलदेव कटारिया। और ये हमारे श्रोता हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सर्वत देशमुख, सानवी और कल्पना देशमुख। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से हैं स्वर्ण सिंह गिल, तरजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुनूर सिंह, गुलाल सिंह और अविराज सिंह। और ये हमारे श्रोता हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नभाकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़े और आशीष मोहरेकर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। गांव पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। गांव आनगांव जिला जालना परमेश्वर शिवे शिंदे कावेरी शिंदे प्रभात शिंदे और इनका पूरा परिवार। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और महराज जहां। गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद यासिन हाशमी, नाजमा बेगम, तौसिफ तैमूर और कलीम अंसारी। ये हमारे श्रोता हैं अस्तुपुरा जिला मऊ से नसर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक। गाजीपुर से हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन। सांगली जिले के जतशहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत, किरत हुजरे और हैं रेहान शेख। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन, अंकुश अरोड़ा,

सलीम अंसारी। ये हमारी श्रोता है अस्तुपुरा जिला मऊ से, मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक गाजीपुर से हैं, आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और हैं रेहान शेख। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन, अंकुश अरोड़ा,

और हैं प्रांजल राय। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल ईशान और पूजा परिहार। और ये हमारे श्रोता है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्टो, रोजी, पर्ल और विलिस डिकेस्टो। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राज मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू हैं। और ये हमारे श्रोता हैं झारखंड सुपाही साही गांव से देवेंद्र तांती, राकेश, प्रकाश, निशा, रेशमा, दीपाली और देवेंद्र जी। हमारे अगले श्रोता हैं गांव शेरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से मंटू शर्मा, सुशीला और लीलाधर शर्मा। और ये हैं गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। श्रोताओं आपकी पसंद पर पेश है ये बहुत प्यारा सा गीत केवल आपके लिए।

दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में रिश्तों को सच्चाई के साथ निभाना चाहिए, क्योंकि आखिर हम जिंदगी में आए किस लिए हैं? अच्छे काम करने के लिए आए हैं तो अपने रिश्तों से भला कैसी बेवफाई। हाँ, लेकिन इतना जरूर याद रखना चाहिए कि रिश्ते निभाते समय सच्चाई और ईमानदारी के साथ साथ खुद को भुला नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब है कि हर किसी पर आंख मूंद कर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, दिल को जो सच्चा लगे उसे जरूर चुन लेना चाहिए, अपने लिए हमेशा, अपनी दोस्ती के लिए या अपने दिल के लिए। क्योंकि दुनिया में चेहरे बहुत हैं दोस्तों, पर दिल से अपने हमें बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन आप तो हमारे अपने हैं। लेते हैं ये अगली व्हाट्सएप की पसंद। पाकुड़ झारखंड से हमारे श्रोता है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, और ये हमारे श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। रोहतक से हैं दीपक, ललिता, शीला, अनीता और इनका परिवार, और ये हमारे श्रोता हैं चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव प्रयाग, प्रियांशी।

और ये हैं कंवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन एमपी से प्रवीण शिमाली और मीना शिमाली। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहानकर राही, श्रीमती सविता गोहानकर, प्रणीता सिद्धांत, अर्जुन गोहानकर। बहादुरा नागपुर से हैं वैशाल, शैलेश गोहानकर, सुमित ध्वनि, परी गोहानकर और प्रिंस एकांश गोहानकर। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुनिटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, फरदीन सुहान, अरजान अबान अब्बासी। छत्रपति संभाजी शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम, अक्षय सेन और उनका पूरा परिवार। और ये हमारे श्रोता है सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक और हर्षित शर्मा। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। आइए सुनते हैं आप सबके लिए ये बहुत खूबसूरत सा नगमा।

दोस्तों, एक ही काम सच्चे और मेहनती आदमी से जिंदगी में दोबारा नहीं होता। और जानते हैं वो कौन सा काम है? वो काम है कि अगर हमारा भरोसा किसी पर से उठ जाए तो वो फिर दोबारा हासिल हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन इसकी गवाही नहीं देता है। इसीलिए हमेशा अपने दोस्त, अपने साथी ऐसे ही चुनो जो कि सच्चे और ईमानदार हों। हाँ, मन तो कहता है कि जो लोग थोड़ी से काबिल हो जाते हैं वो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों को कभी कुछ पता ही नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले लोग अक्सर डूब जाते हैं। बोझ किसी सामान का नहीं होता दोस्तों, वो बोझ होता है गुस्से का, क्रोध का, बदले का या अभिमान का। इसीलिए जिंदगी में हमेशा इस बदले की भावना से इंसान को दूर रहना चाहिए। और एक सच्चा शख्स हमेशा इन बुराइयों से दूर ही रहता है। जैसे कि आपका और हमारा रिश्ता कितना पावन है, ना हमने कभी आपको देखा है ना आपने हमें देखा है, लेकिन फिर भी कितने प्यार से आप हमें ये अपने संदेश भेजते हैं, अपने दिल की बातें करते हैं और गीत भेजते हैं। लेते हैं अपने अगले श्रोताओं के नाम। छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से हैं राष्ट्रपाल गजभैये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभैये। संगमित्रा श्रोता संघ जिला पोफाली यवतमाल से हैं जयराम सिंह अणकर, दिशांत और अर्पिता जी। गांव दूल्हापुर मुरादाबाद यूपी से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। हमारे अगले श्रोता हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दिशा बागमारे और इनके साथ हैं शशांक बागमारे। गांव कुकर थाना सिरसा हरियाणा से हैं रविन्द्र पनिहार, नायरा, यश पनिहार और पूजा पनिहार। और ये हमारे श्रोता हैं मुदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से हैं विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील, बीके पुरी, कैलाश पुरी, नीलम पुरी, रमा पाली पुरी, सुनील पाठक, वीके पुरी, विनोद पुरी और इनका पूरा परिवार। गांव जाखौद राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश, दीपक, कुमारी पूजा खटक। ये संदेश हमें मिला है नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। और ये हमारे श्रोता हैं जलालाबाद शामली यूपी से राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी और जीशान मंसूरी। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नवेद हसन, रशीद वारसी, सुहेल हसन, अनफ यशव, सिकंदरा राउ से हैं मुबीन अब्बासी, इशरत अब्बासी और इनका पूरा परिवार। आप सबके लिए हम लेकर आए हैं ये बहुत प्यारा सा गीत।

दोस्तों आप सब सुन रहे हैं सारिका शर्मा के साथ कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे और आकाशवाणी के हिसार केंद्र पर एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों जिंदगी में हमेशा हमें ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो वक्त आने पर हमारी परछाई बने और सही वक्त पर हमारा आईना बन सके, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई किसी भी वक्त हमारा साथ नहीं छोड़ती है। तो ये सारा खेल ही परछाई और आईने का है दोस्तों, और ये आपके संदेश हैं जो हमेशा परछाई की तरह हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे सामने रहते हैं। मजनू का टीला से हमारे श्रोता हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। और हमारे अगले श्रोता हैं फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल, लाडी, शालिनी, टिवांशी खेड़ा, आरबी खेड़ा और इनका पूरा परिवार। पांडरकवड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री और धनुश्री बुरांडे। बलहार शहर से हैं सूरज लौंडे, प्राची और एकलव्या। और ये हमारे श्रोता हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। पटियाली रोड गंज डुंडवारा यूपी से हैं एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, अकिल कुरैशी, बेबी अरीबा और हबीबा। हमारे अगले श्रोता हैं जिन्होंने हमें भेजा है अपना संदेश गांव कैरो पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शमी, रजनी, आकाशदीप अनहद और गुरुशब्द। रेलवे कॉलोनी बठिंडा से हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक और इनका परिवार। और ये मिला है हमें संदेश औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और हैं राशि राजेश। गांव चोहलदा बागपत से हैं संजय ढिंगिया और नमन ढिंगिया। श्रोताओं आपके लिए लेकर आए हैं ये बेहद दिलकश नगमा।

कल से कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा। आप आज भी उतने हुए थके हुए हैं जितने कल थके हुए थे, और ये आप हर रोज कहेंगे। इसीलिए जो काम जब करना है उसे तब जरूर करो। कद्र और वक्त कमाल के होते हैं दोस्तों। जिस इंसान की कद्र करो कई बार वो हमें वक्त ही नहीं देता, और जिनको वक्त दो वो इंसान हमारी कद्र नहीं करते हैं। फिर ये तो जिंदगी का फलसफा है जो बहुत सच्चा है। उतने ही सच्चे हमारे श्रोता हैं। ये हमारे श्रोता हैं कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया साजदारानी और हैं हिना कौसर। सब्जी मंडी बुल्डाना से हैं शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुजुबाबा, आजानम और मुदस्सिर हुसैन। गांव जेवरा हिसार से हैं वीरेंद्र भयान, शमशेर, सुरेंद्र और मनोज भयान। और ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें अपना संदेश भेजा है। राजकोट गुजरात से हैं रश्मि, झरना और भरत कुमार। हमारे अगले श्रोता हैं तालुका निवासा महाराष्ट्र से बंडू लोहार, चंद्रकला पोपलघट और देवीदास पोपलघट। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव चौटाला हरियाणा से हैं दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। और ये हमारे श्रोता हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। हमारे अगले श्रोता हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, श्रीमती नंदा बोर्ड के और हनुमान बोर्ड के। आम्बेडकर चौक वाकोड़ी से हैं उत्तम जंधाड़े, स्वराज और इनका पूरा परिवार। मोहाली पंजाब से हैं बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हमारे श्रोता हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है ये बहुत प्यारा सा नगमा।

दोस्तों, कई बार जिंदगी में हमें संतुलन बनाकर चलना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है। बैलेंस जितना रहेगा, खुशी का, गम का, प्यार का, मोहब्बत का, झगड़े का, उतना सही रहेगा। कभी कभी बड़ी बड़ी बातें या लड़ाइयां भी हमें नहीं थकाती, बल्कि छोटी छोटी चीजें हमें थका देती हैं, हमें परेशान कर देती हैं। सबसे मजबूत इंसान भी जो होता है, वो छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है। इसीलिए सबसे जरूरी है कि इंसान अपने आप को शांत रखे, और धैर्य वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा पतझड़ के बाद शाखाओं पर फूल और पत्ते जरूर आते हैं, और ये फूल पत्ते ही तो हमें जीना सिखाते हैं। और ये है हमारे श्रोता जो भेज रहे हैं संदेश, कांचूली देशवाली तहसील आदमपुर से मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, दड़ौली से रघुबी मंडेरना, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्रमोहन शर्मा और हैं राम निवास पांडू, वंडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, गंज डिंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन और शमसुल कमर राही। और ये हमारे श्रोता है सादुल शहर जिला श्री गंगानगर से, राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और आलोकिक चंसोलिया, एमएलबी रोड ग्वालियर से है सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव, मेघा साक्षी, आशीष अनुज, विशु छोटू, एसके पप्पी खुराना, जवाहर नगर दुर्ग से है आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। और ये हमारे श्रोता है लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, आदर्श नगर मलो पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरव, सायना और निवान शर्मा। और हमारे ये श्रोता है जिन्होंने हमें भेजा है रावर कनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया, और ये फरमाइश हमें मिली है सनावत एमपी से दिलीप मालाकर, योगेश मालाकर, सुनीता और मुस्कान मालाकर, जिला भिवानी हरियाणा से हैं दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी, प्रवीण कुमार, ममता रानी, कमल कुमार, गर्विश और तमन्ना बंसल, मलोड पंजाब से है रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। आपके लिए हम लेकर आए हैं ये बहुत प्यारा सा नगमा, फिल्म का नाम है कभी कभी।

दोस्तों, जिंदगी की धूप में खुद को तपाना सीख लो, हर मुश्किल को मुस्कुरा कर हराना सीख लो। बुलंदियां खुद ब खुद कदम चूमेंगी, तुम्हें बस खुद की नजरों में अपने आप को उठाना सीख लो। संदेश आपके गीत हमारे व्हाट्सएप बेस्ड ये कार्यक्रम संपन्न करने की अब अनुमति दीजिए अपनी मेजबान सारिका शर्मा को। FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, अब से चंद लम्हों के बाद आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार। प्रतीक्षा के बस चंद लम्हे और हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय के बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanshu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said, while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
3: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियाज थ्रेट विद इन द नेक्स्ट सिक्स मंथ हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल
1: परिणाम लक्षी कार्यवाही
2: Mr. Shah said strict legal action should be taken against those involved. He stressed that since the drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of the State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism. Foreign Affairs Minister of Australia Penny Wong today called on Prime Minister Modi in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi discussed the growing India-Australia comprehensive strategic partnership in areas such as defence, trade, technology and ensuring supply chain resilience. The Prime Minister said India and Australia will work together to continue for the work for free, open, secure and prosperous Indo-Pacific. The Ministry of Railway has given its nod to start operations of the country's first hydrogen-powered 10-coach demo train. It will run at a maximum speed of 75 km per hour between Jind and Sonipat under the Northern Railway Zone. The train will use hydrogen fuel cells to generate power instead of diesel or electricity-based traction. The government has revised the minimum assured procurement price MAPP of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 106 for 8 in 12.4 overs when reports last came in. And Gujarat Titans won the toss and elected to bat. And that's the end of the news bulletin.
4: एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी आज की यह प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल हमारी प्रातकालीन सभा में 5:55 पर आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।